0: और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स। आज की जानकारी का विषय है अमरंथस की खेती।
1: आज की चर्चा का विषय है चौलाई या अमरंथस की खेती। अंडमान द्वीपों में चौलाई पूरे वर्ष पैदा होने वाली पत्तेदार सब्जी है। इसकी पत्तियां एवं रसीली तने लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। इसकी छोटी अवधि, खाद और उर्वरकों के प्रति अतिक्रियाशीलता, अधिक उपज, खेती में सुगमता और द्वीपों में उपलब्ध विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियों में अनुकूलता, विभिन्न प्रकार की किस्मों की उपलब्धता तथा किसी भी फसल प्रणाली में सम्मिलित होने में अनुकूलता के कारण यह किसानों की पसंदीदा फसल है। चौलाई अच्छी जल निकास वाली एवं जैविक खाद से समृद्ध दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। इसकी खेती के लिए पीएच स्तर 5.5 से 7 उपयुक्त होता है। अच्छी फसल के लिए अच्छी किस्मों को अपनाना बहुत जरूरी है। चौलाई की अच्छी किस्मों में CARI AMA ग्रीन, CARI AMA रेड, अर्का सुगना, पूसा किरण, पूसा कीर्ति, पूसा लाल चौलाई, CO1, CO2, CO3, पूसा बड़ी चौलाई और अर्का अरुणिमा आदि शामिल हैं। फसल के मौसम के अनुसार बीज की दर में भी भिन्नता होती है। हमारे इन द्वीपों में शुष्क मौसम में 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और वर्षा के दौरान 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। अमरंथस के लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद की सिफारिश की जाती है। खेत की अंतिम तैयारी के समय गोबर की खाद की पूरी मात्रा खेत में मिला दी जाती है। चूंकि अमरंथस एक छोटी अवधि की उथली जड़ की फसल है, इसलिए इसमें खरपतवार नियंत्रण करना, मिट्टी की सतह पर पपड़ी बनने से रोकना और मिट्टी को भूरा रखना जरूरी होता है।

0: प्रारंभिक अवस्था में खेत को विशेष रूप से खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। द्वीपीय जलवायु के अंतर्गत खरपतवार नियंत्रण के लिए बहु कटाई फसलों के लिए 4 से 5 बार तथा एकल कटाई फसलों के लिए 1 से 2 बार गुड़ाई के साथ साथ हाथ से खरपतवार निकालना एक सामान्य प्रक्रिया है। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो द्वीपों में बारिश के मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, वर्षा विहीन दिनों के दौरान सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। अमरंथस को रोगों और कीड़ों से बचाना बहुत जरूरी है। वर्षा काल में गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में पत्तियों के मुरझाने की बीमारी सबसे गंभीर होती है। इस बीमारी में पत्तियों के फलकों पर सफेद और अनियमित धब्बों के कारण उपज बिक्री के योग्य नहीं रह जाती। पत्तियों की इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधी किस्में जैसे ग्रीन चौलाई CO1 आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे नियंत्रित करने के लिए मैंकोजब 4 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव भी किया जा सकता है। इसी प्रकार पत्तियों पर फुदकने वाले और पत्तियों के छोटे कीट जिन्हें लीफ माइनर कहते हैं, वे पुराने पौधे और एकल फसल पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चौलाई की फसल का अच्छी तरह से अगर प्रबंधन किया जाए तो इनके संक्रमण को कम किया जा सकता है। एमिडा क्लोरोपीट 0.02% या डाइमेथियोएट 0.03% का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से भी इन कीड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। जहां तक कटाई का सवाल है तो सुबह के समय पौधों को उखाड़कर या काटकर चौलाई की कटाई करते हैं। पहली विधि में बड़े पौधे बुआई के 30, 45 और 55 दिनों के बाद जड़ों सहित उखाड़े जाते हैं। बहु कटाई वाली फसलों में पहली कटाई बुआई के 25 से 35 दिनों बाद की जाती है और बाद की कटाइयां 1 सप्ताह के अंतराल पर की जाती है। एकल कटाई वाली फसल की उपज 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 3 से 4 कटाई वाली फसलों की उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। जानकारी का विषय था अमरंथस की खेती। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है।

0: वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और आईआईटी मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: प्रेजेंटिंग हार्ड इकोनॉमिक डेटा टू काउंटर पर्सिस्टेंट क्रिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर डिटेल्ड

22 और 29 सितंबर को सुबह 9 बजे। एमवी बम्बू का शहीद द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा, दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा, दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए

स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप जाने के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल सोमवार 7 सितंबर को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कचाल शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप जाने के लिए कल 7 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सवेरे के 6:15 हुए हैं, अब लीजिए सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष। नमस्कार श्रोताओं, नजरे कभी किसी को ढूंढती है, कभी किसी के सामने ठहर जाती है और कभी पहली ही नजर में दिल पर ऐसा असर कर जाती है कि सब कुछ बदल सा जाता है। फिल्मी गीतों की दुनिया में भी नजरों से जुड़े कई खूबसूरत एहसास सुनने को मिलते हैं। कभी नजरों में प्यार होता है, कभी इंतजार और कभी पहली मुलाकात का जादू। श्रोताओं, इन दिनों नेत्रदान पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। आंखें हमारे जीवन का अनमोल उपहार है जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया के रंगों को देख पाते हैं। नेत्रदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी की उम्मीद जगाई जा सकती है, इसलिए इस विषय में जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। तो आज के इंद्रधनुष में शीर्षक है नजर। श्रोताओं, कभी कभी किसी की तलाश में नजरें हर तरफ भटकती रहती है। भीड़ में भी बस एक ही चेहरा दिखाई देता है और नजरें उसी को ढूंढती रहती है। नजर

दोस्तों जिसे नजरें ढूंढ रही थी, अगर वही अचानक सामने आ जाए, उस पल की खुशी कुछ अलग ही होती है ना? और जब कोई नजर के सामने होने के साथ साथ दिल के भी बहुत करीब हो, तो एहसास और भी खास हो जाता है।

कभी कभी किसी को पहली बार देखते ही दिल में एक अलग सा एहसास जाग उठता है। ऐसा लगता है जैसे उस एक पल में ही कोई जादू हो गया हो। पहली मुलाकात, पहली नजर और दिल में उठती वो अनजानी सी खुशी, बस इसी एहसास को बयां करता है हमारा ये।

0: तो दोस्तों, नज़रों की इन खूबसूरत एहसासों के साथ आज की इंद्रधनुष में बस इतना ही। कभी किसी की तलाश करती नज़रें, कभी सामने और दिल के करीब कोई अपना, और कभी पहली ही नज़र का जादू। फिल्मी गीतों ने इन एहसासों को हमेशा खूबसूरती से सजाया है। और नेत्रदान पखवाड़े के इस अवसर पर बस इतना जरूर याद रखें कि आंखों की अहमियत को समझें और नेत्रदान के प्रति जागरूकता को आगे बढ़ाएं। और अब कार्यक्रम से लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष, प्रस्तुत कर रही थी श्री विद्या। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 353वीं कड़ी।
3: थ्री फाइव थ्री।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के सातवीं तथा अंतिम सोपान उत्तर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मयूर कंठ की हरित आभा वाले नीलवर्णी शोभाधाम पीताम्बरधारी धनुषवाण धारण करने वाले रघुकुल मणि की वंदना का पद है प्रारंभिक श्लोक। भक्त कवि ने भगवान शंकर का वंदन भी किया है जो भक्तों को वांछित फल देते हैं, जिनकी कृपा से जीव को विषय वासनाओं से मुक्ति मिलती है। 14 वर्षों की अवधि समाप्त होने में मात्र एक दिन शेष है। अयोध्या निवासी नर नारी, महलों में माताएं सभी उत्कंठित हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण अब तक क्यों नहीं आए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की 353वीं कड़ी। गायक कलाकार थे राजन मिश्र, साजन मिश्र और हरिहरन, तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अब लीजिए सुनिए कुछ देश गान।

श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कुछ देशगान। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक क्षेत्रों में वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। और अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत आप सुनेंगे अभिलाष तिवारी के साथ ली गई भेंटवार्ता, हुनर से आत्मनिर्भरता तक। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और जगजीत सिंह। सुबह 9:00 बाल जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे राष्ट्रीय निर्माण के शिल्पकार विषय पर जानकारी व साक्षरता दिवस पर चर्चा। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संजीव अभयंकर का गायन होगा। सुबह 10:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी पसंद। 11:30 पर आप चंद गजलें सुन पाएंगे जिसमें फनकार होंगे जगजीत सिंह। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 अन्य कार्यक्रमों के साथ पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर चर्चाएं की जाएगी। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे तलत अजीज और गुलाम अली। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर डॉक्टर सारिका वर्मा के साथ ली गई भेंटवार्ता का विषय रहेगा राष्ट्रीय पोषण माह। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3:00 सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम्स। दोपहर बाद 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सेंट जॉन द बैप्टिज्म हटबे द्वारा प्रस्तुत भक्त

गीत आप सुन पाएंगे। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण और शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 नंजम मरोबदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे तथा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर चर्चाएं होंगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर चर्चा होगी व कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे। संध्या 6 संगीत संगनी कार्यक्रम, 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप मध्य प्रदेश के लोकगीत सुनेंगे। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। रात्रि 8 चित्रपट संगीत कार्यक्रम, 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम। रात्रि 10 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत।

इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर रूपोको का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में NR प्रशांत का कर्नाटक शैली में गायन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 18.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्ध गतिरोधात् नीतिसम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यद् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारतपर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरन्तर क्रियमाणानाम् आलोचनानां प्रत्युत्तररूपेण प्रधानमन्त्री सुदृढार्थिक तथ्याङ्कान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान्

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 5:29 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:26।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित

प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

और अब श्रोताओं, एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस ब्रेक के बाद

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। माई भारत ने द्वीप समूह के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेने की अपील की और मत्स्य पालन सचिव ने चिड़िया टापू का दौरा कर खुले समुद्र में चल रही कमर्शियल केज कल्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8%

0: अली घोष ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और मत्स्य। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माई भारत ने द्वीप समूह के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेने की अपील की है। इसकी शुरुआत विकसित भारत क्विज से हो रही है, जिसे युवा विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में अपने विचारों और नवाचारों का योगदान दे सके। यह पहल 15 से 29 वर्ष के युवाओं को नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। क्विज डिजिटल रूप से विभिन्न भाषाओं में माई भारत पोर्टल पर आयोजित किया जा रहा है। युवा 6 क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। विकसित भारत क्विज 30 सितंबर तक, विकसित भारत निबंध चुनौती 5 से 19 अक्टूबर, जिला चैंपियनशिप 10 से 16 नवंबर, राज्य जिला स्तरीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 17 नवंबर से 7 दिसंबर, जबकि राष्ट्रीय स्तर 10 से 12 जनवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी माई भारत पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन क्विज में भाग ले सकते हैं। माई भारत के निदेशक सुखरंजन बिस्वास ने सभी युवाओं, NSS स्वयंसेवकों, NCC कैडेटों और शैक्षणिक संस्थानों से इस राष्ट्रीय पहल में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से लोगों के बीच HIV और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को रेड रन 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह रेड रन पुरुष और महिला श्रेणी में 17 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। यह दौड़ अंडमान क्लब से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल फ्लैग पॉइंट मजार से होते हुए उसी मार्ग से वापस अंडमान क्लब पर समाप्त होगी। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 9 सितंबर तक खुला रहेगा। इच्छुक प्रतिभागी गूगल फॉर्म लिंक या QR कोड को स्कैन कर पंजीकरण कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ है, वे मौके पर पंजीकरण कर सकते हैं। सभी प्रतिभागियों से सुबह 5:30 बजे तक नेताजी स्टेडियम में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मत्स्य पालन सचिव ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ चिड़िया टापू का दौरा कर खुले समुद्र में चल रही कमर्शियल केज कल्चर परियोजनाओं की समीक्षा की और वैज्ञानिक फीडिंग और मछलियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, पर्यावरण एवं बायो सिक्योरिटी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। मत्स्य पालन विभाग द्वीपों में उत्पादन बढ़ाने, आजीविका के अवसर पैदा करने और प्राकृतिक समुद्री संसाधनों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से मैरी कल्चर के लिए अधिक स्थानों का आवंटन करने की प्रक्रिया में है। मत्स्य पालन विभाग ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की दक्षिण अंडमान जिला कार्य योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शहीद द्वीप स्थित फिश लैंडिंग सेंटर में मरीन डीजल इंजनों की मरम्मत और रखरखाव एवं मछली पकड़ने के जालों की मरम्मत और जालों की सुधराई विषय के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समन्वय मत्स्य पालन उपनिरीक्षक अब्दुल आरिफ ने किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले मरीन डीजल इंजनों के नियमित रखरखाव, बुनियादी मरम्मत, खराबी दूर करने और सुरक्षित संचालन पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पूरा होने पर सभी 20 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

अलावा इंजन रख रखाव और नेट रिपेयर गतिविधियों के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे गॉगल्स और दस्ताने भी प्रदान किए गए। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने जारवा समुदाय के बीच स्थायी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग और पोषण संबंधी सहायता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। विभाग की ओर से हाल ही में जारवा समुदाय के लिए 200 स्वदेशी निकोबारी मुर्गियों का वितरण किया गया। विभाग द्वारा यह

के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। विभाग की ओर से हाल ही में जारवा समुदाय के लिए 200 स्वदेशी निकोबारी मुर्गियों का वितरण किया गया। विभाग द्वारा यह पूरा वितरण 100% सब्सिडी पर किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। माई भारत ने द्वीप समूह के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेने की अपील की। और मत्स्य पालन सचिव ने चिड़िया टापू का दौरा कर खुले समुद्र में चल रही कमर्शियल केज कल्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देश रागनी में। श्रोताओं, माटी की सौंधी महक, तिरंगे का अभिमान और शहीदों की अमर दास्तान, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जीवित एहसास है जिसके हर तान में वतन पर मर मिटने का जज्बा है। तो श्रोताओं, आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से

सचमुच श्रोताओं, इस देश की माटी में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे रूह को छू जाता है। श्रोताओं, वतन की रक्षा सिर्फ सरहद पर खड़े सिपाही नहीं करते, बल्कि इस देश का हर वो नागरिक करता है जो अपने कर्म से भारत माँ का सिर ऊंचा करता है।

श्रोताओं, जब देश की रक्षा की बात आती है तो हमारे वीर जवान अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। उनके लिए वतन सबसे ऊपर होता है। शहादत के बाद भी उनकी आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि उनका अस्तित्व इसी मिट्टी में मिल जाए। तो श्रोताओं, आइए देश के उन वीर सपूतों को नमन करते हुए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ ही देशरागनी कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हो चला है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह के इस खुशनुमा बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई सुबह, नई उम्मीदें और कुछ नया सीखने का जज्बा। श्रोताओं, कहते हैं हर इंसान के भीतर कोई न कोई हुनर जरूर छिपा होता है। जरूरत है तो बस उस हुनर को पहचानने की, उसे निखारने की और सही दिशा में आगे बढ़ाने की। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आइए सुनते हैं अभिलाष तिवारी के साथ ली गई भेंटवार्ता। विषय है हुनर से आत्मनिर्भरता तक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कहा जाता है कि हुनर वो दौलत है जो न छीनती है न खत्म होती है, बस सीखने की चाह हो तो हुनर एक नई राह होती है। जी हाँ श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री अभिलाष तिवारी जी, जो ड्राइविंग प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिकल कार्य, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभवों, चुनौतियों और इस क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं के बारे में। अभिलाष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद अनीता जी।
0: अभिलाष जी, जैसे कि आप एक ड्राइविंग प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिकल काम और इंटीरियर डिजाइनिंग, तीन अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपकी यह अनोखी व्यावसायिक यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइएगा।
1: जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से नए नए चीज़ में जाने का कोशिश करते रहता हूँ, तो आफ्टर माय स्कूलिंग इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मेरा बचपन से ही इलेक्ट्रिकल्स को लेकर के।
0: तो आपने आईटी किया था?
1: जी।
0: अच्छा
1: जी, आईटीआई किया, देन उसके बाद मैंने पॉली में होटल मैनेजमेंट भी किया है।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नया चीज़ करना चाहिए, तो मैंने सिंपली इलेक्ट्रिकल को पकड़ करके काम शुरू किया। मेरे गुरु है, मेरे दोस्त के फादर ही है, तो उन्होंने मुझे नए नए काम सिखाए, फिर मैं उस पर काम करता गया। फिर उसके साथ में मैंने ड्राइविंग सीख

0: ना शुरू किया।
1: जी
0: फिर मैं जब ड्राइविंग सीख गया उसके बाद मैंने खुद का कार खरीदा। खरीदने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सीखने के बाद जब लाइसेंस मिल गया मुझे मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चला पा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने शुरू से चेक किया क्यों नहीं चला पा रहा हूँ, फिर मुझे समझ में अच्छा ये मिस्टेक्स हो रही हैं।
1: अच्छा
0: तो उसके प्रकार मैंने और भी लोगों से पूछा, क्या आपको चलाने के बाद में समझ आया था गाड़ी चलाना?
1: कि
0: तो
1: कोई
0: उन्होंने कहा
1: दिक्कत आ रही है।
0: दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने भी कहा हाँ। तो मैंने खुद पहले ट्रेन हुआ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे लोगों को भी सिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: फिर उसमें मुझे सपोर्ट किया मिस सुमा मैम ने,
1: अच्छा,
0: सुमा मैम जिसको जिनको हम सुमा ड्राइविंग स्कूल के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि उनके कार में आकर के मैं उनको उनके स्टूडेंट्स को सिखाऊं। फिर वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। उसके साथ में मैं इंटीरियर तो इलेक्ट्रिकल कर रहा था, तो मुझे थोड़ा बहुत इंटीरियर का भी नॉलेज हो रहा
1: हो
0: था, तो
1: रहा था।
0: इसके साथ मैंने उसे भी शुरू कर दिया मैम।
1: चलिए, क्या बात है। मतलब एक एक करके आपने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। और बिल्कुल सही बात है कि कहते हैं कि खाली दिमाग जो है शैतान का दिमाग होता है, तो इसके लिए हमें क्या है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बहुत बढ़िया अभिलाष जी। अभिलाष जी, ये तीनों काम एक दूसरे से काफ़ी अलग है। आपके अनुभव से ऐसी कौन सी खूबी कही या हुनर जो इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से बहुत ज़रूरी होता है?
0: तीनों फील्ड आपने जैसे कहा कि अलग-अलग होता है, तो इसमें क्या है, आपका अगर आपको सीखने की चाह है तो वो राह अपने आप निकलता
1: निकल जाती
0: जाएगा।
1: है। जी
0: जी, तो मुझे क्या है, सीखने का भूख कह सकते हैं, मुझे हर चीज़ सीखना रहता है। जैसे अभी मैं योगा में फील्ड में करने का कोशिश कर रहा हूँ,
1: अच्छा
0: जिसमें मैंने अभी रिसेंटली ऋषिकेश जा कर के अपना 200 घंटे का योगा मेडिटेशन का कोर्स ख़त्म करके आए हैं।
1: अच्छा 200
0: जी
1: घंटे का।
0: जी 200
1: जी
0: घंटे का हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, चला रहे हैं।
1: अभी अच्छा शुरुआत
0: जी,
1: जो हुआ नहीं है,
0: शुरुआत
1: लेकिन
0: हुआ नहीं है, मतलब दो तीन लोगों से कोशिश कर रहे हैं
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: अभी इसमें भी फीडबैक मिलेगा, उसके बाद फिर हम
1: तो
0: इसे
1: कह सकते हैं कि ये आपका फ्यूचर प्लानिंग है।
0: इसे
1: अच्छा,
0: हम फ्यूचर प्लानिंग के तो उसमें लेके जा सकते हैं।
1: चलिए। तो आपने जो है कहा कि ड्राइविंग प्रशिक्षण के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल के काम, और साथ ही आप योगा और मेडिटेशन को भी साथ में लेकर
0: जी
1: चलना
0: हाँ जी
1: चाहते हैं,
0: हाँ
1: जो आज के युग के लिए बहुत ज़्यादा
0: जी
1: ज़रूरी है।
0: हाँ
1: जैसे कि आपने कहा कि आप एक ड्राइविंग प्रशिक्षक हैं,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: आपके अनुसार आजकल जो है कई सारे सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप भी देख रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा की ऐसी कौन कौन सी एक आदत है जिसे हर चालक को ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं?
0: देखिए, जहाँ तक हमारे आइलैंड का बात है, तो यहाँ पर हर लोग बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं और हेलमेट पहन के चलाते हैं, ट्रैफिक रूल का नियमों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ लिमिट से गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी दुर्घटना हो रही हैं। और जैसे मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइसेंस ले लिया, मतलब वो चलाना सीख गए। नॉर्मली पब्लिक का जो थॉट ऑफ प्रोसेस रहता है यही कि लाइसेंस मिल गया तो आप सीख गए, आप सिर्फ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, रिटर्न आ जाइए, आप सीख गए। लेकिन नहीं, ये एक स्किल है,
1: अच्छा,
0: ये आपको चलाते चलाते चलाते चलाते 2 महीना 3 महीने के बाद आएगा। तो इन सबसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे ना करे। जिसको जितना टाइम लेते हैं वो उस टाइम को यूज़ करे, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी सीख करके उसके बाद रास्ते पे आए।
1: जी जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम जो है पूरी तरीके से सीख नहीं
0: जी
1: पाएंगे।
0: जी
1: जी
0: जब तक हम तैयार नहीं होंगे, तब तो हम अगर रास्ते में लेकर के निकलेंगे तो यही सब दुर्घटना होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हो गई कि ड्राइविंग प्रशिक्षक के तौर पर
0: जी
1: मैंने आपसे कुछ
0: जी
1: सवाल किए थे,
0: जी
1: तो अब मैं जानना चाहूँगी कि बिजली से जुड़ी कुछ बात आपसे कर
0: जरूर
1: लेते
0: जरूर
1: हैं, क्योंकि
0: जरूर
1: आपने आईटीआई किया है।
0: जरूर मैम
1: तो घरों में लोग जाने अनजाने में ऐसी कौन कौन सी आम गलतियाँ करते हैं जो आगे चलकर सुरक्षा के लिए, हम सभी के लिए खतरा बन सकता है?
0: देखिए, जैसे जनरली लोग जो गलती करते हैं, एसी को हरदम ऑन रखते हैं, फ्रिज तो चलेगा ही है, फिर उसके बाद में ग्रीजर होता है उसे भी लोग चालू करके भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ जो है क्या होता है, आगे जा करके दुर्घटना का कारण बन जाता है। कभी कभी आपका स्विच ऑन होता है ग्रीजर का, हमें पता नहीं चलता वो कब शॉर्ट होकर के पानी के थ्रू
1: पानी।
0: में इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है,
1: जी
0: और जब हम उसे छूते हैं तो शॉक लग जाता है। और वैसे ही एसी के साथ में भी होता है, एसी चल रहा है पता नहीं है हमें, लेकिन एसी में तो खैर हमारा रिमोट होता है तो उतना दिक्कत नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, एसी का कंप्रेसर जो है वो ओवरहीटेड हो जाता है और वो फट जाता है।
1: हम जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ करें उसके बारे में, हमें उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी
0: नॉलेज
1: है।
0: होना भी
1: जी
0: जरूरी है, अगर वो यूज़ पे नहीं है तो आप उसको ऑफ करिए,
1: ऑफ कर
0: इससे आपके
1: दीजिए।
0: घर के इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा। फैन मैंने बहुत जगह पे देखा है, घर पे कोई नहीं होता है, लाइट
1: फैन
0: फैन
1: चलता
0: सब
1: रहता है।
0: चलता रहता है, जो जरूरी का है वो चलाइए। लाइक

0: आप फ्रिज चला सकते हो क्योंकि उसे हम ऑफ़ नहीं कर सकते, इन्वर्टर चला सकते हैं उसे हम ऑफ़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ों को अगर यूज़ नहीं है तो ऑफ़ करके रखिए।
1: जी, ये बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने, कि लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि अगर जो चीज़ यूज़ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक की चीज़ें, तो
0: जी
1: उसे ऑफ़ कर देना ही हम सभी के लिए
0: जी
1: जो है भला हो। आजकल ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिकल है, अगर घर में MCB बार बार ट्रिप हो रही है, क्योंकि हमने देखा ही है कि बार बार जो है ऑफ़ होता है, ऑन होता है, ऑफ़ होता है, ऑन होता है विद्युत उपकरण, तो असामान्य तरीके से काम कर रहे हैं ये सारे उपकरण जो है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या खुद उसे ठीक करने की कोशिश करना उचित है उनके लिए?
0: ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल क्या होता है, यूट्यूब देख करके हर कोई इलेक्ट्रिशियन बनने का कोशिश करता है, जिनके चलते बहुत लोगों को शौक भी लगता है और बहुत बार वो ठीक कर भी देते हैं लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निमंत्रण है कि वो क्या करे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, उसके बाद उनसे बात करे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि कट ऑफ हो रहा है, MCB अप एंड डाउन हो रहा है, दो कारण उससे होता है, एक या तो कहीं शॉर्ट हो रहा है
1: जी
0: या जो आपका जो AC है, जैसे कि हरदम नहीं होगा कभी कभार ही होगा, जैसे फैन शॉर्ट हो गया उस समय पे ये आपका MCB अप एंड डाउन होगा, आप जैसे अप करोगे जैसे कोई स्विच ऑन करोगे ट्रिप हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कहीं शॉर्ट हो रहा है। तो उस
1: अच्छा
0: समय पे आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, सिंपली उसको नीचे रखिए, किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को बुला के उससे रिपेयर करवाइए।
1: जी, अभिला जी, जैसे कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, तो हमारे श्रोताओं को ये बताइएगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, घर का खूबसूरत दिखना या उसका आरामदायक और उपयोगी होना?
0: बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में होता क्या है। हम जो उनको कॉन्सेप्ट देते हैं वो उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि आपको कंफर्टेबल मिले, ना कि आपका घर छोटा दिखे, है ना। बहुत बार क्या होता है, हम इंटीरियर में बहुत सारा चीज़ करा देते हैं जिसके चलते घर छोटा
1: घर छोटा
0: दिखता है
1: दिखता है।
0: और हमें कंफर्टेबल नहीं फील होता। तो उस समय पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली चेक करना है कि मेरे ज़रूरत का क्या है, ना कि दूसरे।
1: दूसरे
0: मैं
1: का।
0: इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मुझे पैसा कमाना है, आपको कुछ भी बोल दूंगा आप एक्सेप्ट कर लोगी, फिर उसके
1: जी।
0: बाद मैं कर दूंगा, फिर उसके बाद आपको कुछ महीनों बाद पता चलेगा आपको जो ज़रूरत है। हर एक कोने को आप बंद मत करिए, रूम जितना ओपन रहता है उतना अच्छा रहता
1: अच्छा
0: है,
1: लगता है।
0: उतना फ्री रहता है, उतने हमें काम करने में कम मदद मिलती है। तो ये सब चीज़ है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा भरना नहीं है घर को, सिंपल रखिए और जहाँ तक हो सके कम खर्चे में उसको मेंटेन करने की कोशिश करें।
1: सिंपल में ही जो है सिंपलिसिटी होती है और अच्छा
0: एग्जैक्टली,
1: लगता है।
0: बहुत सही।
1: जी, आज हर कोई जो है अपने घर को सजाना चाहता है, जो श्रोता कम खर्च में अपने घर को ज़्यादा सुंदर और ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप किन छोटे छोटे बदलावों का सुझाव देना चाहेंगे?
0: जी, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली अपने घर को अगर मॉडिफाई करना है, आपको अगर तोड़ा ताड़ी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल आप उसमें वॉलपेपर लगा सकते हो, फिर उसके बाद में अभी नया सीलिंग आया है जिसे हम प्लास्टिक PVC के नाम से जानते हैं, उससे
1: अच्छा।
0: हम लगा सकते हैं, वो बहुत कम कॉस्ट में होता है, उसके लिए हमें कोई जगह तोड़ने का ज़रूरत नहीं, कुछ पेंट का ज़रूरत नहीं, वो बहुत सुंदर सुंदर शेप में आता है।
1: जी
0: तो उसमें क्या होगा, आप अगर आप लगा दोगी तो वो बहुत सुंदर भी दिखेगा और बहुत कम से कम खर्चे में
1: खर्च
0: हो
1: में हो
0: जाएगा आपका।
1: जाएगा। जी
0: उसमें ना तो आपको पुट्टी चढ़ाना है ना पेंट लगाना है। और उसके बाद आता है आपका लाइटिंग, अगर आप उस पर दो चार लाइट सुंदर वाला लगा दो तो आपका घर एकदम
1: जी
0: जगमगा जाएगा।
1: और आजकल जो है ऑनलाइन भी जो है काफ़ी कम कॉस्ट में जो है ये सभी चीज़ें
0: जी जी
1: उपलब्ध
0: जी
1: हो
0: जी
1: जाती हैं।
0: बहुत
1: तो चलिए, आपने हमें जो है बताया ड्राइविंग प्रशिक्षण के बारे में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, और साथ ही इलेक्ट्रिकल के बारे में भी आपने बहुत सारी जानकारी दी। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़े युवाओं की ओर। आज के युवाएं जो है नई नई स्किल सीखकर अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, आप युवाओं को क्या सलाह देंगे कि किस तरह से किसी प्रैक्टिकल स्किल को सीखकर उसे अपने करियर की ताकत बना सकते हैं? क्योंकि आज के युवा बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड को इतना सीखो कि आप आंख बंद करके भी उसको कर लो, और उसके बाद कोई पास जाना है हमें पैसे कमाने के लिए, पहले हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है, पहले उस स्किल को इतना सीख लेना है हमें कि हमसे बेटर कोई कर ही ना पाए। अगर वो अगर हमारे अंदर आ गया तो हमें पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर उसके बाद क्या होगा, आप अपना फ्रेंचाइजी खोलो, आप अपना रेट बताओ, ना कि आप किसी के पास जाके बोलो भैया मुझे 10,000 का नौकरी दे दो, मैं आपके लिए सुबह से शाम तक काम करूंगा।
1: जी।
0: वो पर्सन तो करवाता रहेगा, लेकिन आपको क्या है, अपने आप में एक ऐसा

0: हुनर करना है जो आपसे बेटर कोई भी ना कर पाए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये अगर ये सोच हमारे नए युगा में आ गई तो ये बहुत आगे जा करके मतलब कुछ छोटा नहीं लगेगा उनको, हर चीज बड़ा लगेगा। और स्किल को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अगर कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने मम्मी और पापा का चेहरा देखता हूँ, जा करके नहीं सिर्फ कहीं पे बैठ जाऊंगा और देखूंगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो भी उनको नहीं बताया, तो क्यों नहीं बताया उसके पीछे भी अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उनको बता देता तो वो खुश होते है ना। लेकिन क्या है, जब मैं यहाँ आता फिर उनका खुशी थोड़ा मोड़ा कम हो जाता, जाता फिर खुश हो जाता, लेकिन जब मैं जा करके उनको बताऊंगा तो वो जो खुशी है मैं उनकी आंखों में देख पाऊंगा, उसे लेकर के मैं कभी और भी अगर डिप्रेस हो रहा हूँ तो फिर मैं उसी चीज को रियलाइज करूंगा और फिर से खुश हो जाऊंगा। तो मैं दोस्तों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता को खुश करिए, आगे का काम अपने आप होता जाएगा, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। और स्किल कभी छोटा नहीं होता है, चाहे आप झाड़ू मार रहे हो चाहे आप फ्लाइट चला रहे हो, आपका काम है।
1: बिल्कुल, और काम से प्यार होना चाहिए।
0: धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ऑल इंडिया रेडियो का, जो कि मुझे बुलाया और आपके साथ बात करने का मौका दिया। मेरे दोस्तों को भी यही बताना चाहूंगा कि प्लीज आप जो है गलत संगत पे ना जाए, जहां तक हो सके आप अपने काम से काम रखे, लोगों से भी मिले और उनको क्या चाहिए आप उनका हेल्प करें।
1: लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो हायर स्टडीज करते हैं, हायर स्टडीज करके वो बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि छोटे मोटे स्किल्स में क्या रखा है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि हायर स्टडीज करने के बावजूद भी, जैसे आपने कहा कि आप अभी तक सीख रहे हैं, आप योगा मेडिटेशन भी जो है हाल ही में आप सीख कर आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि हमें जिंदगी में सिर्फ हायर स्टडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए या देखना चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड का जॉब मिले या फिर कई सारी स्किल्स है उसको भी अपना कर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने ज्यादा ही पढ़ लिया तो अब ऑब्वियस सा बात है कि वो छोटा काम नहीं करेंगे, ईगो में लगेगा। लेकिन अगर उनको उनके प्रकार का जॉब नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, उनको छोटे जॉब को ही आप प्यार करो ना, जो मिल रहा है आप उससे खुश रहिए और उसे आगे लेकर के जाइए।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने स्किल्स के बारे में बताई, स्किल्स जो है काफी लोग पसंद भी करते हैं और काफी लोग जो है आपके पास सीखने भी आते हैं और इंटीरियर डिजाइनर के लिए अपने घर पर भी बुलाते हैं, तो इन सभी में मैं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का क्या रोल है, जिनके अंदर हुनर है स्किल्स है क्या वो सोशल मीडिया के माध्यम आगे बढ़ सकते हैं?
0: हाँ जी, अगर आप सोशल मीडिया में जाते हो तो सोशल मीडिया क्या है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में, लेकिन हम क्या करते हैं उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के उसके नेगेटिव के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जैसे लाइक्स के पीछे भागते हैं, व्यूज के पीछे भागते हैं, तो ये सब में क्या होता है, हम उसके नेगेटिव वे में जा रहे हैं ना कि पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे जिसका कोई हद नहीं है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठूंगा तो फ्री टाइम पे क्या करूंगा, वीडियोस देखूंगा, और एआई को पता है मुझे दिखाना क्या है, वो दिखाता जाएगा और मैं देखता जाऊंगा, इससे मेरा टाइम तो लॉस हो रहा है लेकिन जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ उसको फायदा हो रहा है। तो ऐसा कुछ हम करें कि लोग हमें देखे ना कि हम लोगों को देखे, तो ये मैं कहना चाहता हूँ।
1: मैं जानना चाहूंगी कि आपके आगे के प्लान्स क्या है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है और क्या करना चाहते हैं?
0: मैं तो अगर आप पूछ रही हो फ्यूचर प्लानिंग, तो मेरा मेडिटेशन तो है मेरा फोकस, और अभी आने वाले फ्यूचर में मैं करने का सोच रहा हूँ कि ड्राइवर ऑन डिमांड पे, उसमें हमारे फोकस ये रहेगा कि बहुत लोगों के घर पे गाड़ी होता है, पड़ा रहता है गाड़ी, बेटा लिया है वो बाहर चला जाता है पढ़ने या ड्यूटी या ऑफिस कुछ भी,
1: घर में जो है बुजुर्ग है, लेकिन गाड़ी जो
0: गाड़ी
1: है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है।
0: तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसे ऐप बनाऊंगा जिसमें कि लोग घंटे के हिसाब में हायर कर पाएंगे ड्राइवर्स को, और वो ड्राइवर आएगा आपके घर पे, गाड़ी लेगा, आपको ड्राइव पे लेकर के जाएगा, घुमाएगा, फिर रिटर्न गाड़ी लेकर के आके रख देगा, फिर उसके बाद वो चला जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा करने का मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो मेरा मोटिव है सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों के जिंदगी में पहुंचाना,
1: खुशियां लाना।
0: एग्जैक्टली, खुशियां लाना, यही है मेरा मोटिव।
1: चलिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो भी आपने सोचा है वो पूरा हो। जी हाँ, और आप आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमे। तो अभिलाष जी, उम्मीद है आज की ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए भी कुछ नया सीखने और जानने का खूबसूरत मौका बनेगी। कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इनसे भेंट कर रही थी कि अनीता कुमारी व कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी रेवा केसवरी। तो श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 7:50 और 50 सेकेंड। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर। श्रोताओं, कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आता है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दिल में हल्की सी घबराहट, चेहरे पर मुस्कान और मन में

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया।

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from

0: the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
2: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
3: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
4: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3

0: ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली

0: प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं, चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
3: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
3: देश की defense manufacturing अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
2: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
3: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको चंद गजलें सुनवाने जा रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं नीना मेहता और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में एहसान दानिश की रचना।

0: and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: ताऊ सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और जगजीत सिंह को। इस समय सुबह के 9 बजे हैं।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं, अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे, बाल जगत।

जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी मेरे नन्हे दोस्तों का आज के कार्यक्रम में आपकी रीता दीदी करती है ढेर सारा स्वागत। दोस्तों, शिक्षक होना आसान नहीं होता। जीवन की कठिन परिस्थितियों को प्यार बनाकर बच्चों को जीवन के राह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। टीचर होना आसान

दोस्तों, टीचर होना आसान नहीं होता। पसीने को सिहाई बना करके पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना। इसीलिए पहले खुद चलना पड़ता है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी। टीचर पहले खुद पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता, स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वे कैसे तेज भागेंगे? खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना भी उलझा हो, बच्चों के इक्वेशन को सुलझाना ही पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। प्रिंसिपल की डांट को मुस्कान बनाना पड़ता है। इनके खुशियों के बीच अपना गम छुपाना पड़ता है। पेरेंट्स का गुस्सा प्यार बनाकर लौटाना पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। सभी बच्चे हीरे होते हैं, लेकिन जौहरी बनके टीचर ही बताता है कि किसको कैसे तराशना है। देश सैल्यूट करता है हर एक टीचर को, क्योंकि टीचर होना आसान नहीं होता और टीचर से ज्यादा कोई महान नहीं होता। टीचर तो वे होते हैं जो हमें दुनिया में सर उठाकर चलने की काबिल बनाते हैं। सही और गलत में फर्क हमें वो सिखलाते हैं। लोग हमारा नाम फेसबुक पर नहीं, गूगल पर सर्च करें, हमें उस लायक वो हमें बनाते हैं। रोते रोते जब पहली बार हम स्कूल आए थे, तब भी हमें हंसाया था। जब भी हमें जरूरत पड़ी, उन्होंने हमारे लिए हर वो किरदार निभाया था। ABCD से A+B होल स्क्वायर तक का सफर उन्होंने ही पार कराया है। जब हम कमजोर पड़े, उन्होंने ही तो हमें विश्वास दिलाया है। हमारे हर स्टूपिड से डाउट्स को भी शांति से सॉल्व कराते हैं। जब भी हम हिम्मत हार जाएं, हमारे अंदर नई उम्मीद वो ही तो भरते हैं। डियर टीचर, थैंक यू हमारे हर उस हर भटके हुए दिन को सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें ये एहसास दिलाने के लिए। थैंक यू हम आज जो कुछ भी हैं उसे बनाने के लिए।

दोस्तों, हमारी दुनिया अनोखी सी है। हर कहानी, हर कविता और हर जानकारी नई नई शिक्षाएं दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम एक नए रोमांचक सफर की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। आज का यह सफर जुड़ा है एक जादुई चाबी से, जो दुनिया का हर ताला खोल सकती है। दोस्तों, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, जो कि हम हर साल 8 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। आइए, आज के इस सफर में हम आपको समझाएंगे कि पढ़ना लिखना हमारे लिए सिर्फ एक होमवर्क नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। बच्चों, जरा सोचिए, अगर दुनिया में शब्द ना होते, किताबें ना होती और आप अपने पसंदीदा कॉमिक्स या सुपर हीरो की कहानी नहीं पढ़ पाते, तो दुनिया कैसी दिखती? बिल्कुल बेरंग और खामोश, है ना? साक्षरता का मतलब सिर्फ ABCD या कख गघ सीखना नहीं है। इसका सही मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी सोच को पंख देना और सही गलत की पहचान करना। जब आप पढ़ना सीखते हैं, तो आप सिर्फ एक छात्र नहीं रहते, बल्कि आप बन जाते हैं अपने ही जीवन के जासूस, जो हर पहेली को चुटकियों में सुलझा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने किताबों से दोस्ती की, उन्होंने इतिहास बदल डाला। हमारे देश के महान नेताओं और वैज्ञानिकों ने भी बचपन में बहुत कुछ सीखा था और आज भी हमारे आदर्श हैं। जब आप स्कूल की बेंच पर बैठते हैं, तो आप सिर्फ इतिहास या गणित के सूत्र नहीं रट रहे होते, बल्कि आप अपने देश का कल लिख रहे होते हैं। नन्ही दोस्तों, रेडियो के उस पार बैठे बैठे क्या आप हमारे साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहोगे? आज घर पर अपनी किसी भी पुरानी

कहानी की किताब से कोई एक ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका मतलब आपको ना पता हो, फिर अपने माता पिता या शिक्षक से उसका अर्थ पूछिए। यह बन जाएगा आपका आज का नया जादुई शब्द। आपके आसपास कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने किसी वजह से स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाता। क्या आप उन्हें खेल खेल में वर्णमाला या गिनती सिखा सकते हैं? किसी को ज्ञान बांटने से आपका अपना ज्ञान भी बढ़ता है। वाह, यह तो बहुत ही शानदार विचार है ना दोस्तों। शिक्षा एक ऐसा तोहफा है जो बांटने से और ज्यादा चमकता है। इस साक्षरता दिवस

0: तो ज्ञान के प्रकाश में जगमगा देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आप सब मन लगाकर पढ़ेंगे और अपने इस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupee at the district level, 2 lakh rupee at the UT level, and 5 lakh rupee at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: नहीं दोस्तों, आप सभी से एक दिलचस्प सवाल। रात के अंधेरे में रास्तों को देखने के लिए टॉर्च या उजाले की जरूरत होती है ना? वैसे ही हमारे जीवन और हमारे भविष्य के अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षा का उजाला सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर साल 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ताकि हर इंसान तक शिक्षा की रोशनी पहुँच सके। साक्षरता का असली मतलब समझना केवल अपना नाम लिखना या हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि दुनिया को समझना, सही गलत की पहचान करना, अपने अधिकारों को जानना और जीवन में आत्मनिर्भर बनना, जो सफलता के हर बंद दरवाजे को खोलने वाली एक जादुई चाबी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन, जिन्होंने भारी सामाजिक कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के बावजूद पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं और अपनी मेहनत के दम पर देश का संविधान लिखा, जिससे यह संदेश मिलता है कि अगर पढ़ने की सच्ची लगन हो तो गरीबी या मुश्किलें कभी भी रास्ते का रोड़ा नहीं बनती।

अंधेरे को चीर कर जो रोशनी ले आए, अंधेरे को चीर कर जो रोशनी ले आए, वही सच्चा दीप ज्ञान का जलाए, वही सच्चा दीप ज्ञान का जलाए। अक्षर अक्षर जोड़ के पढ़ना सिखलाए, अक्षर अक्षर जोड़ कर पढ़ना सिखलाए, हर इंसान के जीवन में नई आशा जगाए, हर इंसान के जीवन में एक नई आश जगाए। कलम की ताकत से जो तकदीर बदल दे, कलम की ताकत से जो तकदीर बदल दे, अज्ञानता के हर पहरे को पल भर में कुचल दे, अज्ञानता के हर पहरे को पल भर में कुचल दे। हाथ में किताब हो मन में विश्वास हो, हाथ में किताब हो मन में विश्वास हो, तभी तो हर चेहरे पर एक नया प्रकाश हो, तभी तो हर चेहरे पर एक नया प्रकाश हो। आओ मिलकर आज हम सब मिलकर यह कसम खाएं, आओ मिलकर आज हम सब मिलकर यह कसम खाएं, देश के हर कोने तक शिक्षा की अलख जगाएं, देश के हर कोने तक शिक्षा की अलख जगाएं। कोई न रहे अब अनपढ़ हर बच्चा आगे आए, कोई न रहे अब अनपढ़ हर बच्चा आगे आए, साक्षरता का यह पर्व हर घर खुशियां लाए, साक्षरता का यह पर हर घर खुशियां लाए। दोस्तों जब भी साक्षरता का कोई दिया इस देश के किसी कोने में जलता है तो उसके पीछे हमेशा एक शिक्षक की थकी हुई लेकिन अधिक उंगलियां होती है। वे सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर अक्षर नहीं लिखते बल्कि किसी अंधकार में डूबी जिंदगी में सवेरे की इबादत दर्ज करते हैं।

नन्हे दोस्तों, साक्षरता दिवस केवल शब्दों और आंकड़ों का उत्सव नहीं है, या उन शिक्षकों को मौन प्रणाम करने का दिन है जिन्होंने समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे दुनिया पढ़ने का हौसला दिया। जब एक शिक्षक किसी अज्ञानी को साक्षर बनाता है, तो वह केवल एक इंसान को पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, बल्कि इस पूरी दुनिया को थोड़ा और रोशन, थोड़ा और संवेदनशील बना देता है।

दोस्तों, ज्ञान का दीपक जलाकर राह जो दिखलाते हैं, अंधकार को दूर कर जीवन को महकाते हैं, वो गुरु वो शिक्षक ही तो हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। कक्षा की उन चौखट पर जब पहली बार आते हैं, अक्षरों के मेल से दुनिया नहीं सजाते हैं, उंगलियों को पकड़कर हमारी चलना सिखलाते हैं, गिरे जो कभी राह में तो हौसला बढ़ाते हैं। न कोई स्वार्थ उनका, न कोई अभिलाषा है, हर शिष्य की सफलता ही उनकी परिभाषा है। धैर्य की मूरत बनकर वो हर पाठ पढ़ाते हैं, अपनी हर सीख से वे जीवन को संवारते हैं। सलाम है ऐसे गुरु को जो ज्ञान का उजाला फैलाते हैं, भाग्य के बंद दरवाजों को जो खोलकर दिखलाते हैं। युगों युगों तक पूज्य रहेगा यह पावन वरदान, शिक्षक ही रचता है इस धरती पर नया जहां।

दोस्तों सोचिए उन बच्चों के बारे में जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी थी, या उन माँ के बारे में जो अपने बच्चे की स्कूल डायरी पर पहली बार अपना नाम लिखती है। उस पल उनकी आंखों में जो चमक होती है वह दरअसल उस गुरु के वर्षों के समर्पण की ही परछाई होती है, जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर मोमबत्ती की तरह खुद को पिघलाता रहता है। हर उस शिक्षक को दिल से नमन जिनकी वजह से आज हर घर में अक्षर बोल रहे हैं और उम्मीद सांस ले रही है।

0: कराने का ना रे। चेक चेक, हेलो चेक। अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
1: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुनने जा रहे हैं संजीव अभयंकर का गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संजीव अभयंकर का गाया राग भैरव।

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माई भारत ने द्वीप समूह के युवाओं से विकसित

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100। इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: रविवार का दिन है, थोड़ा सुकून का एहसास हो, कुछ खूबसूरत नगमे हैं और अपनों का साथ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खुशनुमा रविवार में आपके अपने कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो चलिए आपकी पसंद और फरमाइश के साथ शुरू करते हैं आज की ये सुरीली महफिल और बातें करते हैं आज के पहले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
2: जय माता दी।
1: जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान का।
1: जी पूरन वर्मा जी, बताइए पहले तो कैसे हैं आप?
2: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, काफी दिनों के बाद में आए हो आप।
1: जी, और काफी दिनों बाद भी बात हो रही है आपसे।
2: जी,
1: तो बताइए इस वक्त क्या कर रहे हैं?
2: बस मैडम इस वक्त तो आपका कार्यक्रम का इंतजार कर रहा था कि कब 10 बजे और कब हेलो फरमाइश में।
1: जी, तो बताइए आज के कार्यक्रम में आपने कौन सा गाना चुना है?
2: जी मैडम, आपको उधर मौसम कैसा हो रहा है मैडम? या तो हमारी है तो आज तो धूप है और 2-3 दिन से तो बारिश हो रही है मैडम।
1: या भी मौसम है, धूप है, गर्मी भी बहुत है, बारिश कभी कभार होती है। जी,
2: तो फिल्म का नाम है आरजू और गाने के बोल है दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती।
1: गीत तो आपने बड़ा ही अच्छा चुना है, आपने ये गीत ही क्यों चुना है आज सुनने के लिए?
2: जी मैडम, ये गीत इसलिए सुना है क्योंकि रेडियो के माध्यम से हम घर बैठे बैठे एक दूसरे से बातचीत हो जाती है, दोस्ती बढ़ जाती है, तो ये गाना इसलिए सुना की दोस्ती करता नहीं दोस्ती हो जाती है रेडियो के माध्यम से, और उनसे बात भी होती रहती है कोई से भी राज्य के।
1: जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने आपका गाना निकाल लिया है, आइए सुनते हैं आपके पसंद का आज। जी,
2: कुछ साथियों को याद कर लें?
1: जी हाँ, नाम ले लीजिए।
2: सबसे पहले तो आप है।
1: जी धन्यवाद।
2: और मेरा दोस्त है राकेश है, शिवालवाड़ है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, और विजयपुरम से पूर्णिमा मैडम है, अमल भाई है, अमर साहु है, और जितने भी कॉलर देपाली है।

0: महाराष्ट्र बंटारा से, और तमाम सुनने वाले आगे आपसे बातचीत करेंगे कार्यक्रम में लाइव उनके लिए
1: जी। धर्मवीर, तो चलिए पूर्ण वर्मा जी, सुनवाते हैं आपको आरजू फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
0: जी, आपका नाम?
1: आपका नाम
2: जी? मेरा नाम स्वाति है।
0: स्वाति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: मेरे गांव का नाम मोहला महाराष्ट्र है, तहसील खामगांव, जिला बुलढाणा।
0: जी स्वाति जी, बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करती हैं आप?
2: जी मैं तो आंखों से ब्लाइंड हूँ मैम, घर पे।
0: जी तो आप हमारे केंद्र के कार्यक्रमों को सुनती है?
2: जी मैम, सारे कार्यक्रमों को सुनती हूँ।
0: जी कैसे लगता है आपको हमारे कार्यक्रम?
2: सब अच्छे लगते हैं।
0: जी
2: जी,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनेंगी?
2: राधा का संगम फिल्म का गीत सुना दीजिए।
0: कौन सा गीत है?
2: काना काना तू है सबका माना।
0: जी
2: जी,
0: तो बताइए
2: मौसम कैसा है आप?
0: जी मौसम तो यहाँ अच्छा है, धूप निकला हुआ है, गर्मी भी बहुत है। आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
2: हमारे यहाँ मौसम एक महीने से बारिश नहीं हुई है मैम।
0: जी
2: धूप निकली हुई।
0: अच्छा अच्छा
2: जी,
0: तो बताइए आपके परिवार में और कौन कौन है?
2: मेरे परिवार में माँ है, पापा है, दादी है, हम चार बहने हैं।
0: जी
2: मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी
0: है।
2: जी
0: तो चलिए अपने सारे परिवार वालों के साथ सुनिए ये फिल्म राधा का संगम।
2: नाम लेना चाहती हूँ?
0: जी हाँ ले लीजिए दोस्तों का नाम।
2: सबसे पहले तो आपके लिए मैम।
0: जी धन्यवाद।
2: और मेरे बहन है दीपाली है, जयश्री है, रेणुका है। मेरे मम्मी पापा के लिए शिवराज है, देवांश है, कानपुर से पूनम जी है और पूरण वर्मा जी है, रिंकी पिंकी है, भगवान सिंह परमार है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी है और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए मैम।
0: तो चलिए स्वाति जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू मैम।
0: जी

0: विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश
2: जी, आपका नाम?
3: जी, मेरा नाम है अमल बसमतारी और मैं रंगापारा सोनीतपुर असम से।
2: जी अमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी जी जी, बहुत दिनों के बाद फिर से इस कार्यक्रम में शामिल हो गया, इसलिए मुझको बहुत खुशी हो रहा है और आपको भी मेरे कॉल को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से।
2: जी तो अमल जी बताइए, क्या करते हैं आप?
3: मैं तो खेत के साथ जुड़ते हो तो आज सांदे है और आज घर में भी है, प्रोग्राम सुन सुन के अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ।
2: जी तो आज छुट्टी है मान लीजिए, फैमिली के साथ आज का दिन कैसा बीत रहा है आपका?
3: आज का दिन तो बहुत अच्छे तरह से जाएगा सर, तो आज ज्यादा गर्मी भी नहीं हो रहा है, धूप नहीं दिखाया है, तो ठंडी के दिनों में बताना चाहती हूँ कि ठंडी के दिनों में हमारे चाय का काम नहीं चलता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक काम चलता है और जो संडे रहता है ना हमारा छुट्टी का दिन रहता है, बगान का कोई काम नहीं चलता है।
2: जी बाकी दिन तो आप तो आप काम पर रहते हैं कि रविवार एक ऐसा दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना या कहीं घूमने फिरने का प्लान? कहीं
3: कोई दो बार बंद होता है कभी कभी, तो मंगलवार को भी तो कोई मंदिर जाने वाले कोई घर वालों का कोई बिजी रहता है तो मैं मंदिर जाना पड़ता है, टाइम पर भी थोड़ा फ्री मिलता है।
2: जी तो आज का कोई खास प्लान?
3: आज का तो मैं घर पर ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, वहाँ रात को पूरे बारिश हुआ था तो आज कहीं नहीं जाऊंगी, घर पे रहूंगी।
2: जी तो अमल जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
3: आज तो इश्क करेगी तो दर्द मिलेगा ये गाना सुना दीजिए, कुमार सानू रोहित नारायण की आवाज में, तो मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा इस गाने को।
2: जी जरूर।
3: सबसे पहले हमारे आकाशवाणी लिसनर्स ग्रुप का नाम लेना चाहूंगा, सबसे पहले हमारा एडमिन जो है और बहुत सारे सुनने वाले हैं जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, भाईकोन मुंडा, विमल बसुमतारी, संजय मुंडा, गागेरा भा, रमेश पत्रो, रोनू पत्रो, लाकी, देवाशीष हजूरिका, सुनीता बसुमतारी और आशुतोष देवनाथ, संगीता, अविनाश तेली, तानुश्री और राकेश, पूरन वर्मा, शिवा लोहार, भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति है और बहुत सारे सुनने वाले दोस्तों को मैं डेडिकेट कर।
2: जी दोस्तों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है आपकी।
3: जी जी जी और आपको भी सुनाना चाहूंगा।
2: जी तो सारे आपके तमाम दोस्तों के साथ सुनिए इक्का राजा रानी फिल्म का ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: थैंक यू मैम।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के

0: महेश, हेलो।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: हाँ, मैं कश्मीर सोना मर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: जी लतीफ अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत दूर से फोन किया है। पहले तो गीत बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।
0: गीत कौन सा है?
1: करते हैं हम प्यारी मिस्टर इंडिया से। हाँ
0: जी तो लतीफ जी, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: बस, मैं तो खेती किसानी करता हूँ। आजकल यहाँ पे मौसम सुहाना बना है। हाँ
0: जी
1: जी, और मेरे साथ साथी दिल्ली से धर्मवीर अंकल
0: जी
1: और गजराज लोधी, लोकेंद्र वर्मा और भगवान सिंह परमा, राकेश कुमार शुमला से।
0: तो लतीफ जी, चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: और रमेश प्रजापति टेलर मास्टर।
0: जी तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: नए झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
5: नमस्कार, मेरी बात किन से हो रही है?
6: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश जी बोल रहा हूँ।
5: जी अविनाश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉल लग गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
5: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बताइए, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
6: इन दिनों तो बस कार्यक्रम सुन रहे हैं और अपना काम में भी लगे हुए हैं। कार्यक्रम सुनते हुए काम करते हुए बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम करते करते तो काम में मन लगा रहता है और काम भी बहुत अच्छे से होता रहता है।
5: जी, तो यानी काम तो चल ही रहा है, साथ में रेडियो संगीत का साथ भी मिल रहा है आपको।
6: जी,
5: तो चलिए इसी बात पे बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
6: जी, गीत के बोलता मैं बता देता हूँ, और मेरे एक दोस्त लाइन पे उनसे गीत आज छोड़ देंगे, तलाक बोलू थे जिंदगी दिन गीत देंगे हम। गीत है और मेरे दोस्त से बात करेंगे।
7: हेलो मेरी प्यारी प्यारी मैम, कौन है प्यार भरा? गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग जी, आपका नाम?
7: मैं ग्राम गुनौरे जिला सताराम महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ मैम।
5: जी बताइए, क्या करती हैं आप?
7: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
5: जी बहुत अच्छी बात है।
7: और मैम आपसे बात करकर तो बहुत खुशी हो रही है।
5: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो बताइए इस वक्त अभी क्या कर रही थी आप?
7: मैम आपका रेडियो सुन रही थी, और जिस प्रकार आज कार्यक्रम कर रही है ना, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम लग रहा है।
5: जी धन्यवाद। तो
7: पर मैं दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ।
5: जी ले लीजिए।

0: अपने पाप को डेडिकेट रहेगा। फिर मेरे पापा है भगवान शर्मा जी, अविनाश जी है, राकेश शुक्ला से, सावन कदे, रमेश प्रजापति, राम शर्मा जी, गजर लोधी से, पुष्करना शर्मा है, तुलसीराम शर्मा है, और महाराष्ट्र मेरी दीदी है, हमारी दीदी उनको मेरे को डेडिकेट रहेगा, और अमर शर्मा चाह रहे उनको मेरे उनके लिए
1: जी।
0: Okay.
1: जी तो चलिए सुनते हैं तलाश फिल्म का ये गीत।

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो दीदी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: हीराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
2: जी भगवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद दीदी
2: जी। और बताइए क्या कर रहे हैं
3: दीदी? दीदी आपका कार्यक्रम ही सुन रहा था। 4 दिनों से हमारे इधर अच्छी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में दीदी।
2: जी
3: जी। और दीदी फिल्म का नाम आपको बताना चाहूंगा, अनोखा अंदाज है, और गाने के बोले मौसम आशिकाना है। और दीदी कुछ दोस्तों का याद करना चाहेंगे।
2: जी नाम ले लीजिए दोस्तों का।
3: हमारी बहन है पूर्णिमा दीदी है विजयपुरम, श्री विजयपुरम से। स्वाति सिंह जी है, दीपाली जी है महाराष्ट्र से। तनुश्री बेटिया गंगाधर सावनकर जी है। और गजराज लोधी जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, गंगाधर सावनकर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी, पूनम दीदी है कानपुर, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे। और अविनाश तेली जी है।
2: जी तो अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
3: जी दीदी हम खेती किसानी करते हैं, और अभी हमने हमारे मतलब 1 महीने बाद फसल आ जाएगी दीदी, मक्का की और सोयाबीन की।
2: जी तो अच्छी बात है। तो कामकाज में तो काफी व्यस्त रहते हैं, जब आप अपने लिए समय कैसे निकाल पाते हैं आप?
3: जी दीदी हम क्या है मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनते हैं ज्यादातर, तो दीदी तो काम भी करते रहते हैं और कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं। मैं 2:30 बजे वाला आपका जो आउट वाला कार्यक्रम है दीदी हमेशा कभी मिस नहीं करता, और ये संडे के दिन आता है 10 बजे जे वाला भी सुनता हूँ, हेलो म्यूजिक लवर भी सुनता हूँ। यूं ही गाते रहो गीत, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी, यूं ही गाते रहो कार्यक्रम।
2: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ दीजिए, कार्यक्रम को पसंद करिए, हम आगे भी कोशिश करेंगे और भी बेहतर कुछ कर सके।
3: जी हाँ दीदी, कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है, आपके कार्यक्रम 1 नंबर प्रसारित होते हैं सभी।
2: जी जी तो चलिए भगवान सिंह जी आपका गाना मिल चुका है, सुनाते हैं अनोखा अंदाज फिल्म का ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: शुक्रिया आपका।
2: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: जिला गुना एमपी तहसील मधुसूदन ग्राम की बोल रहा हूँ मैम।
0: जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: और कैसी हो मैम आप?
0: जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: और वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
0: जी यहाँ तो काफी गर्मी है, धूप निकली हुई है।
1: जी मैम जी,
0: आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: बस ऐसा ही हो रहा है मैम, यहाँ टिप टिप पानी चल रहा था मैम, चल रहा।
0: जी और बताइए।
1: और सब अच्छे मैम?
0: और आज तो छुट्टी का दिन है, बताइए कैसे बीत रहा है आज का दिन आपका?
1: अच्छा बीत रहा है मैम, हम तो किसान है मैम, रोज ही छुट्टी रहती
0: है। जी आपके लिए छुट्टी नहीं रहती है। जी फिर भी रविवार का एक समय होता है कि थोड़े से कामकाज से थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़ा अपने लिए या परिवार वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो सही बोल रही है।
0: जी बाकी काम के व्यस्तता में तो हम भूल ही जाते हैं, बस काम पर लगे रहते हैं, बट अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए।
1: जी मैम जी मैम जी मैम, 3-4 महीने में ज्यादा समय मिला मुझे भी कॉल लगाने का।
0: तो आप खेती बाड़ी करते हैं, बताइए आपका कैसा फसल कैसे हो रहे?
1: अरे अच्छी ही मैम, सोयाबीन लगाई अच्छी है अभी तो।
0: अच्छा तो बताइए आज आप कौन से गीत सुनेंगे?
1: अंकुश मूवी का गाना है, इसने इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और आपकी इजाजत हो तो मैं हम कुछ दोस्तों को याद कर लूँ?
0: जी जरूर, नाम ले लीजिए।

0: के लिए तो मैम आप
1: जी धन्यवाद।
0: और अनुप वो मांगीलाल चंदेल जी है, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी है, और उनकी धर्मपत्नी वो भाभी जी भी है, और रमेश प्रजापति है, और पूरन वर्मा जी है, और अविनाश जी है, और पहला दूसरे नंबर पे कॉल मेरी लगी थी मैम, अपना कट गया था फोन, आवाज नहीं आई थी, कुछ
1: हो
0: रहा था इसलिए बच्चे बच्चे खेल रहे थे, पहले दूसरे नंबर मेरा चला था फोन
1: जी। चलिए अभी तो बात हो गई आपसे, आपका गाना भी मिल चुका है, तो चलिए सुनते हैं आपको पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद, नमस्कार पूरन जी।

और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश में संगीत का ये खूबसूरत सिलसिला यही थमता है। इसी तरह अपनी पसंद और अपनी फरमाइश के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे संगीत की एक नई महफिल और कुछ नए नगमों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी पसंद। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में अतिथि हैं संगीत प्रेमी श्री उदय नारायण।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मेरी पसंद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय नारायण। मैं डीब्रेट में HOD के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, मुझे संगीत बहुत पसंद है और इसके कई कारण हैं। दोस्त, संगीत मुझे इसलिए पसंद है कि संगीत मेरे अकेलेपन का साथी है, मेरे खुशी का उत्सव है और मेरी उदासी का सहारा है। जब दिल में बहुत कुछ हो और शब्द कम पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि संगीत ही मेरी भावनाओं को आवाज़ देता है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम मेरी पसंद है, इसका पहला गीत मैं आप सबको, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये गाना है डाकिया डाक लाया और इसे हमने फिल्म पलकों की छांव से लिया है। इस गाने की मज़ेदार बात यह है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तो इस गाने में फीलिंग लाने के लिए किशोरदा अपने घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक साइकिल में गए, ताकि इस गाने में जो है वो डाकिया का फीलिंग आ सके। आप सुनिए और बताइए कि क्या किशोरदा ने इस गाने पर बिल्कुल फीलिंग डाला है। चलिए दोस्तों, हम और आप मिलकर सुनते हैं इस गाने को और इसका लुत्फ उठाते हैं।

दोस्तों, संगीत के हर सुर में मुझे एक एहसास मिलता है, हर धुन में एक याद मिलती है और हर गीत में मुझे अपना कुछ हिस्सा दिखाई देता है दोस्तों। इसलिए मुझे संगीत बहुत पसंद है। तो चलिए, मेरी पसंद के दूसरे गाने मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये गाना बहुत ही पॉपुलर गाना है दोस्तों। गाने की बोल है, ऐसे ना मुझे तुम देखो, इसे भी किशोर दा ने अपनी बुलंद आवाज़ दी है। ये गाना हमने फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से लिया है। इस गीत की एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी शूटिंग महाराष्ट्र के महाबलेश्वर किले में हुई थी। बाद में इस गीत का एक हिस्सा फिल्म धूम के टाइटल सॉन्ग में भी इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। तो चलिए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं।

अब मैं अपनी तीसरी गीत आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। ये गाना किशोर दा ने अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करके इस गाने को गाया था। गाने के बोल हैं, होठों पे जान चली आएगी। इसे हमने फिल्म पतिता से लिया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1953 में भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम पतिता था, लेकिन ये गाना 1980 की फिल्म पतिता से लिया गया है। तो दोस्तों सुनते हैं इस गाने को और इन्जॉय करते हैं।

ये जो चौथा गाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यहाँ पर संगीत का रंग हम थोड़ा से बदलाव देखते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर किशोरदा ने इतना विरह से इस गाने को गाया है कि इसमें यहाँ पर वो प्रेम की बातें करते हैं और यादों और विरह की दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो चलिए लुत्फ लेते हैं मेरे चौथे पसंदीदा गीत की।

चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम के पांचवें पड़ाव पर हम पहुंचते हैं और मैं आपके सामने मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत, और मैं आशा करता हूं कि ये आप सबका भी बहुत ही पसंदीदा गीत होगा दोस्तों। ये फिल्म जोशीला से लिया गया है, जिसे 1973 में प्रोड्यूस किया गया था, और इस फिल्म का जो गाना है, ये गाना है किसका रास्ता देखे। दोस्तों इस गाने को ध्यान से सुनिए और फील कीजिए इस गाने को, और बताइए कि किशोर दा ने

अब दोस्तों समय का तकाजा है, आज के इस कार्यक्रम मेरी पसंद के आखिरी गीत की तरफ चलते हैं। ये गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये हमने फिल्म घर घर की कहानी से लिया और गीत के बोल है समा है सुहाना। आजकल जो हमारे सिटी में जो मौसम चल रहा है बारिश का और सुहाना मौसम है, ये गाना इस मौसम के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना है। दोस्तों सुनिए इस गाने को और इन्जॉय कीजिएगा।

0: तो श्रोताओं, आज की इस कार्यक्रम मेरी पसंद में हमने सुने किशोर कुमार की आवाज़ में 6 अलग अलग भाव के गाने। पहला डाक का इंतज़ार, दूसरा प्रेम की शरारत, तीसरा रोमांस की गर्माहट, फिर यादों का दर्द, फिर अकेलेपन की पुकार और एक सुहानी शाम। शायद यही किशोर कुमार की सबसे बड़ी खूबी थी, वो केवल गीत नहीं गाते थे, गीत को जीते थे। दोस्तों, मेरी पसंद के इन 6 गीत जो मैंने आपके सामने पेश किए, हमें हिंदी सिनेमा के उस दौर की याद दिलाती हैं जब गीत फिल्म का हिस्सा होने के साथ साथ फिल्म की आत्मा भी हुआ करते थे। इसी के साथ आज के मेरी पसंद कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मेरी पसंद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथि थे संगीत प्रेमी श्री उदय नारायण। इसके साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कुछ खूबसूरत गजलें जगजीत सिंह की आवाज में।

0: कराने का ना रे।
1: चेक चेक, हेलो चेक।
0: अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
2: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

अभी आपने सुना मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?

0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Lalema Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: मिस्टर मोदी सेड इंडियाज 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ अमिड

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अब सुनिए इब्राहिम अश्क का कलाम।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप तलत अजीज को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में, जिसे लेकर हाजिर है आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। तो चलिए अपनी इस मुलाकात को शुरू करते हैं।

एक सुविचार के साथ, जो कहता है कि यादें दिल का वो अनमोल खजाना है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। जीवन में इंसान हमसे दूर चला जाता है, लेकिन उसकी बातें और उसकी यादें हमारे दिल में सदैव जिंदा रहती हैं, जो पल पल को और भी खूबसूरत बनाती हैं, चेहरे पर एक मुस्कान ले आती हैं। इसलिए बहनों, ऐसी यादें बनाएं जो जाने के बाद चेहरे पर मुस्कान लाए। तो चलिए, अब यादों की बात कर ही रहे हैं तो आइए अब यहाँ पे एक गीत सुन लेते हैं यादों से जुड़ा।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत,

0: पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: बहनों, चलिए अब हम राष्ट्रीय पोषण माह की बात करते हैं, जिसे हर वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है और इसका अहम उद्देश्य देश भर में कुपोषण को खत्म करके और सही पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो आइए सही पोषण युक्त आहार से जुड़ी आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं, जहां हमने बातचीत करी डॉक्टर सारिका वर्मा जी से। तो आइए उनसे हुई हमारी बातचीत आपको सुनवाते हैं।

0: तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
1: डॉक्टर
0: सारिका वर्मा जी, जो कि एक डाइटिशियन हैं और एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो आइए उनसे पोषण के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि सही पोषण किसे कहते हैं?
1: सही पोषण का अर्थ होता है संतुलित पोषण। शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, विटामिन, खनिज और जल सही मात्रा में प्रदान करना ही सही पोषण है।
0: तो क्या जो भी हम रोज़ खाते हैं उससे हमें पूरा पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कि हम कैसे जान सकते हैं?
1: इसके लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि डाइवर्सिटी। जैसे आपकी थाली में दालें, हरी सब्जियां, अनाज, फल और दूध जो उत्पादन है वो शामिल है या नहीं। दूसरा जाता है एनर्जी एंड स्वास्थ्य के लिए। यदि आप दिन भर में अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हो, आपका वजन जो है वो स्थिर है, बैलेंस है, आपका डाइजेशन अच्छा है, पाचन जो पाचन क्रिया है हमारी अगर वो नॉर्मल है और हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आपका जो आहार है वो पर्याप्त पोषण आपको दे रहा है।
0: अच्छा, एक बात बताइए कि पोषण को जो है वो जन आंदोलन क्यों कहा जाता है?
1: पोषण को जन आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोषण केवल किसी एक व्यक्ति, परिवार या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है।
0: जी
1: जब माता पिता, परिवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, जन प्रतिनिधि और समुदाय सभी मिलकर पोषण के लिए कार्य करते हैं, तभी व्यापक और अस्थायी परिवर्तन संभव होता है। इसलिए पोषण को एक जन आंदोलन के रूप में देखा जाता है।
0: अच्छा, एक बात और बताइए कि हम रोज़ खाना खाते हैं, हम रोज़ भोजन करते हैं, पोषण और भोजन में क्या अंतर होता है?
1: भोजन वह है जो हम खाते हैं,
0: जी
1: जबकि पोषण वह प्रक्रिया है से संबंधित है जिसके माध्यम से हमारे शरीर को भोजन से आवश्यक पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल अधिक भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, भोजन संतुलित, विविध और पौष्टिक होना चाहिए।
0: अच्छा, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम मानते हैं, हमें लगता है कि पौष्टिक जो भोजन होता है वो महंगा होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या पौष्टिक भोजन जो है वो महंगा होता है?
1: बिल्कुल नहीं मैम, पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा होना आवश्यक नहीं है। हमारे आसपास उपलब्ध कई स्थानीय खाद्य पदार्थ पौष्टिक और किफ़ायती हो सकते हैं।
0: जी
1: सही जानकारी और भोजन में विविधता के माध्यम से परिवार संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता है। जैसे पीनट्स है और आलमंड्स है, दोनों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगभग सेम ही आती है।

0: पर दोनों के कास्ट में बहुत वेरिएशन है। जो ग्राउंड नट्स होता है, पीनट्स होता है, वो आपको 150 से 200 रुपीज़ केजी में आपको आ जाएगा।
1: बिल्कुल
0: वहीं पे आलमंड्स आपको 800, 900, 1200 तक में आएगा। तो काफ़ी डिफरेंसेस है रेट्स में, पर इसका जो वैल्यू है न्यूट्रिशनल वो सेम है।
1: अच्छा, तो
0: जी
1: हम लोग जो है एक सस्ता माध्यम जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर
0: जी
1: चाहे तो।
0: जी ये तो रही वेज की बात।
1: जी
0: नॉनवेज में बात करते हैं, अगर नॉनवेज लेते हैं मटन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है।
1: जी
0: 1200 to 1400 के रेंज में आता है। सेम अगर हम लोग सोयाबीन यूज़ करते हैं,
1: जी
0: तो वो प्रोटीन आपको कम रेंज में सेम प्रोटीन सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिलेगी। और उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपके पकाने की क्रिया पे भी डिपेंड करता है कि
1: अच्छा
0: आप उसे किस तरह पकाते हो। बहुत लोग
1: अच्छा
0: उसको ओवर कुक करते हैं,
1: हाँ
0: ओवर कुक करने से उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो लॉस हो जाता है।
1: अच्छा
0: ठीक है, और बहुत लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को अच्छे से पहले पील वगैरह कर लेते हैं, फिर वॉश करके फिर चॉप वगैरह करते हैं, तो उसका
1: जी
0: जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रहता है, जो वाटर डिजॉल्वल होता है, वो नहीं
1: हाँ
0: डिजॉल्व होता है, वो रह जाता है। लेकिन
1: ओ
0: बहुत लोग होते हैं उसको काट के छोटे छोटे पीसेज में कट करके उसको फिर से वॉश करते हैं, तो जैसे हमारे विटामिन जो वाटर डिजॉल्वल है वो तो
1: वो
0: वाटर में
1: निकल जाते
0: डिजॉल्व हो
1: वाटर
0: गए।
1: में।
0: जैसे विटामिन बी और सी, वो हमेशा वाटर डिजॉल्व, कितने भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हैं, अगर आपने उसे चॉप करके वॉश कर दिया तो वो तो वहीं लॉस हो गए।
1: इसका मतलब उनको पील करके फिर वॉश करके फिर चॉप
0: फिर
1: करना
0: आप जो
1: चाहिए।
0: जितने मर्जी उतने छोटे पीसेस में काट लो, खा सकते
1: हाँ
0: हो, लेकिन छोटे पीसेस में काट के आप उसको वॉश मत करो।
1: अच्छा, ये आपने बहुत सही बात बताई।
0: हाँ
1: अक्सर हम ये गलती कर देते हैं
0: जी,
1: किचन के
0: और
1: अंदर।
0: इसीलिए डॉक्टर्स भी हमेशा एडवाइस करते हैं कि विटामिन सी और बी जो होता है हमें हमेशा ऊपर से इनटेक लेना चाहिए।
1: अच्छा, हमारी थाली किस तरह की होनी चाहिए?
0: हमारी जो थाली है वो कंप्लीट थाली होनी चाहिए, जैसे कि 1/3 का रेशियो होता है। फर्स्ट जो पोर्शन होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, सेकंड होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो हमारा 1/3 जो पार्ट बचता है वो सारी मिक्स चीज़ें होती हैं। एक थाली को
1: अच्छा
0: तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: कार्ब्स
1: जी
0: हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स।
1: अच्छा, तो हमारी एक थाली के अंदर जब ये सब है तो इसका मतलब हमारी जो थाली है वो एकदम पौष्टिक थाली हमारी तैयार हुई है,
0: जी जी
1: और साथ में पानी का भी
0: हाँ,
1: रोल,
0: पानी का भी रोल है।
1: पानी का भी
0: जी
1: रोल है बराबर।
0: जी
1: अब हम जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर जो है खाने पीने में आनाकानी करते हैं, तो उनके पोषण का ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं?
0: पोषण का ख्याल बच्चों में बहुत तरीके से रख सकते हैं। बच्चों को जो भी हम लोग पोषण दे रहे हैं वो देखने में थोड़ा कलरफुल हो,
1: जी
0: खाने में इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट से बच्चे खाए उसको देख के, उसका जो जो टेक्सचर होता है वो भी बैलेंस हो, और उसके लिए हमें अलग अलग तरह के उनको भोजन जो है परोसने चाहिए। जैसे हम पराठे बनाते हैं या डोसा बनाते हैं तो उसको स्टफ फॉर्म में देना चाहिए।
1: अच्छा
0: बच्चे सिंपल रोटी ऐसे पसंद नहीं करते। ग्रीन वेजिटेबल्स को बॉईल किया, मैश किया, आटे के साथ उसको गूना, पराठा बनाया, पूरी बनाया, इस तरह के बहुत सारे वैरायटीज़ हम दे सकते हैं, जिसे
1: अच्छा
0: बच्चे इजीली डाइजेस्ट भी करेंगे और इंटरेस्ट से खाएंगे भी।
1: मतलब बच्चे को पूड़ी का और पराठे का स्वाद भी आ गया और साथ में न्यूट्रिशन भी उसके अंदर चला
0: न्यूट्रिशन
1: गया,
0: भी आ गया, कलर्स भी आ गए।
1: कलर्स
0: जैसे
1: भी
0: अगर
1: आ
0: आपने
1: गए।
0: बीट रूट की पूरी बनाई या पराठे बनाए तो वो रेड कलर में दिखेंगे,
1: जी
0: पालक के बनाए तो वो ग्रीन कलर में आ जाएंगे,
1: जी
0: कैरेट्स के
1: जी
0: बनाए तो वो ऑरेंज येलो में दिखेंगे। तो बच्चे कलर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी
1: तो बच्चों को बच्चों के इंटरेस्ट का ही दे तो बहुत बढ़िया है।
0: जी जी जी
1: और उनके यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स उतने ही मात्रा में रहना चाहिए जितने बड़ों की मात्रा में?
0: नहीं, उतने मात्रा में नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली उनके एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है।
1: जी
0: बच्चों को कार्ब्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो एनर्जेटिक रहते हैं,
1: जी
0: और बहुत ज़्यादा उनका जो फिजिकल जो होता है वो एक 24 आवर्स देखेंगे तो ज़्यादा लेजीनेस नहीं होते, वो एक्टिव
1: हाँ,
0: होते हैं,
1: एक्टिव रहते
0: वो
1: हैं।
0: खेलते हैं। अगर आप उसको सुलाओगे दिन में तो जल्दी सोएंगे भी नहीं, उनको
1: जी
0: खेलना
1: बिल्कुल
0: है, उनको पकड़ पाना मुश्किल होता है,
1: जी
0: तो उसके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिसमें कार्ब्स की हम लोग मात्रा को बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा, तो उस तरह का खाना दे
0: जी
1: जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा
0: हाँ
1: में
0: जी
1: हो।
0: हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए ही चाहिए एनर्जी के लिए,
1: जी
0: पर ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
1: जी आजकल प्रोटीन के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता
0: जी
1: है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है,
0: बहुत ज़रूरी है।
1: बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें किस तरह का पोषण हमें देना चाहिए?
0: गर्भवती महिलाओं के लिए तो उनको आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर जो खाना होता है, जिससे उनको खून की कमी ना हो, जैसे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आयरन की गोलियां उन्हें देनी बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा
0: इसके साथ साथ प्रोटीन और

0: कैल्शियम की भी ध्यान रखने हैं, जिसमें दूध, दही, पनीर और दालें, ताकि जो शिशु की हड्डियां और मांसपेशियों का जो है सही तरीके से विकास हो सके। और जो शाकाहारी है वो मांसाहारी को रिप्लेस करके ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं जो उसके रिप्लेस में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन काउंट सोयाबीन है,
1: अच्छा,
0: सोयाबीन ले सकते हो आप, जो एनिमल फूड से भी ज़्यादा आपको प्रोटीन
1: प्रोटीन
0: देता है।
1: देता है। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि प्रोटीन जो है अच्छे मात्रा में लेने के लिए हमें सोयाबीन का इस्तेमाल करना
0: जी
1: चाहिए। क्या प्रसव के बाद और प्रसव का जो पहले का पोषण होता है महिला का, दोनों में क्या अंतर होता है?
0: जी दोनों में तो अंतर बहुत होता है, लेकिन फर्स्ट जो प्रसव से पहले जो गर्भावस्था होती है
1: जी
0: उसमें जो होता है सबसे ज़्यादा हम लोग जो ध्यान देते हैं वो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पे होता है। इसमें जैसे फॉलिक एसिड हो गया, आयरन और कैल्शियम की अधिक ज़रूरत पड़ती है। प्रसव के बाद जो स्तनपान की अवस्था होती है जिसमें मदर्स बच्चे को फीड कराते हैं,
1: जी जी
0: उसमें माँ को रिकवरी के साथ साथ बच्चे को दूध पिलाने के लिए अतिरिक्त कैलोरी की अधिक ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि शिशु को पर्याप्त दूध मिल सके।
1: अच्छा, और जब जो शिशु है जब वो माँ का दूध पीना बंद कर देता है तो उस समय उसको किस तरह का पोषण देना चाहिए?
0: शिशु को एक सेमी सॉलिड में दे सकते हैं, जैसे मैश किया हुआ पोटैटोज़ या बनानाज मिल्क के साथ में मैश करके, एप्पल, राइप एप्पल जो होता है हल्का सा कुक करके बटर के साथ में सौगी करके उसको दे सकते हैं। और आज के डेट में तो शुगर और सॉल्ट का कम से कम यूज़ करना है बच्चों के लिए, क्योंकि उनका तो टेस्ट पर उतना डेवलप होता नहीं है। तो आप जैसा टेस्ट उसे कराओगे वैसा ही उसको आदत पड़ेगा।
1: मतलब
0: तो
1: जितना
0: लेस यूज़,
1: प्राकृतिक
0: जितना आप लेस यूज़ कर सकते हैं उतनी अच्छी उनके
1: मतलब
0: लिए, हेल्थ के
1: प्राकृतिक
0: लिए।
1: मिठास फलों की जितनी उसको मिल सके
0: बस
1: वो ही
0: जी
1: पर्याप्त है हमारे
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: शरीर
0: जी
1: के लिए।
0: जी जी
1: एक और बात जानना चाहेंगे कि पोषण माह जो मना रहे हैं हम, उसका मुख्य कारण क्या है ये मनाने का?
0: पोषण माह मुख्य कारण इसका ये होता है कि जो कुपोषण है हमारे
1: जी
0: यहाँ या पूरा ऑल इंडिया में, आप ये लेवल पे राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ये कुपोषण को जड़ से खत्म करना इसका मेन उद्देश्य होता है, महिलाओं, बच्चों में, किशोरियों में और आम जनता को संतुलित आहार एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक कराना।
1: अच्छा,
0: और ये प्रोग्राम पूरे 1 महीने चलता है, इसे मंथ लॉन्ग प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इस बार जो है वो 9th राष्ट्रीय पोषण माह है, जो कि 9th ऑफ सितंबर से लेकर 9th ऑफ अक्टूबर तक होता है। जी
1: एक पूरे 1 महीने तक ये
0: जी
1: पोषण माह चलेगा ताकि कुपोषण को जो है वो जड़ से खत्म किया जा सके।
0: जी जी
1: इस वर्ष के जो मुख्य बिंदु हैं पोषण माह के, वो किस चीज़ पे केंद्रित किए गए हैं?
0: जी इस वर्ष का जो हमारा मेन थीम है वो है हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी। ये हमारा मेन थीम है। इसके अंदर में 5 जो है ऐसे सब थीम्स आए हैं जिस पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें से पहला आता है आहार में विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन का सेवन। जो भी हम खाना लेंगे, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। सेकंड जो है ताज़ा और गर्म पका हुआ भोजन,
1: जी
0: हॉट कुक मील, इसका मेन उद्देश्य जाता है। इसमें जैसे कि हम लोग जो जब भी जो पकाए उसको उसी टाइम उसका सेवन करें, उसको रख के सुबह का शाम, शाम का सुबह या फिर रात का सुबह करके नहीं खाना है, उसी टाइम आप उसको
1: पर आप क्या कारण बता सकते हैं कि ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए?
0: करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं और वो फर्मेंट हो जाता है। तो हर फर्मेंट खाना वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: जी और थर्ड जो है सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, 4th में पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास, 5th PMBY एवं मातृत्व स्वास्थ्य।
1: एक बात बताइए, आपने प्रोटीन की बात कही यहाँ पे भी, मैं थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूँगी कि प्रोटीन हमारे शरीर को किस तरह से मदद करता है?
0: प्रोटीन जो है उसको ग्रोथ प्रोटीन भी बोलते हैं। वो हमारे शरीर का डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रोटीन इंटेक जो होता है पर बॉडी वेट के हिसाब से पर होता है, पर ग्राम।
1: अच्छा,
0: जैसे अगर हमारी बॉडी वेट 60 kg है तो मुझे पर डे जो है 60 g प्रोटीन इंटेक करना है। जी
1: इसी के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें सुनने को मिलते हैं, क्या वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी
0: जी
1: है?
0: जैसे हमारे लिए प्रोटीन्स, कार्ब्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरत है उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सेल के विकास के लिए होता है।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो बच्चों के खाने में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा सकता है?
0: हाँ, वो नेचुरली ऐड होता है। जैसे हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं

0: तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या जो भी है, ये मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, वो आप कंज्यूम हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: मतलब जितनी खूबसूरत हमारी थाली होगी
0: बस
1: उतना
0: उतना
1: ही
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत
0: हमारा स्वास्थ्य
1: हमारा
0: होगा।
1: स्वास्थ्य भी होगा।
0: जी।
1: अब कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि संतुलित और पौष्टिक आहार के बारे में आपका क्या संदेश रहेगा सुनने वालों को?
0: संतुलित और पौष्टिक आहार के बारे में यही संदेश देना चाहूंगी मैं कि सही पोषण ही स्वास्थ्य जीवन की नींव है। बाहर के जंक फूड को कहे ना, और घर की थाली में शामिल करें सभी रंग बिरंगी सब्जियां, फल, दालें, अनाज, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें।
1: जी, बहुत सही कहा आपने, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें। डॉक्टर सारिका जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में हमें बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।

बहनों, हमें आशा है कि डॉक्टर सारिका वर्मा जी से हुई हमारी भेंट वार्ता आपने ज़रूर ध्यान से सुनी होगी और आप भी पौष्टिक आहार के साथ साथ व्यायाम पर अपना और अपनों का ध्यान केंद्रित करेंगी। अक्सर हम बहनें ऐसा करती हैं कि दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है और आपका परिवार स्वस्थ है तो पूरा संसार स्वस्थ है। इसलिए अपना भी ख्याल भरपूर रखें। तो चलिए, फिलहाल हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं एक प्यारे से गीत की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का अंक यही समाप्त होता है। तो अब आप अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा रोड़ो को आज के अंक से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप घर संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों के बाद मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और

0: दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म्स

0: कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
0: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को

0: निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व तो आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31:40 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म राम अवतार से अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की आवाजों में, जिसकी गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं मजरू का लिखा गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अब प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में समीर का लिखा एवं अमर उत्पाल का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आजा मेरी जान का ये गीत।

दूध का कर्ज। आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है अनु मलिक ने। गायक कलाकार है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में समीर के लिखे इस हम इसे दोबारा सुनिए और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है निखिल विनय ने।

0: श्रोताओं, हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत लहरी अब यहीं समाप्त होता है।
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एल्बम गीतों का कार्यक्रम एल्बम टाइम। दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, अब सुनिए हैरी आनंद की आवाज में एल्बम इत्तेफाकन प्यार से एक गीत।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। 3:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही किसी खास इंसान की याद अपने आप दिल के करीब आ जाती है। कोई रिश्ता, कोई दोस्ती या फिर कोई खूबसूरत यादें। गीत वही रहता है, लेकिन उससे जुड़ी हमारी याद हर बार नई हो जाती है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

ज़िंदगी के सफ़र में कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं, लेकिन उनकी यादें लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। किसी अनजान चेहरे का यूँ दिल के करीब आ जाना भी अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है।

0: बताएं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

दोस्तों, सफ़र में मंजिल जितनी ज़रूरी होती है उतने ही खूबसूरत होते हैं रास्ते। रास्ते में बदलते नज़ारे, नई जगहें और नए अनुभव हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी यही रास्ते हमें खुद से मिलने का मौका भी देते हैं और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की वजह भी देते हैं।

हमारे ज़िंदगी का सफ़र यूँ तो लंबा और तन्हा होता है, पर जब कोई हमसफ़र इस ज़िंदगी में जुड़ जाता है तो सफ़र कितना सुंदर और अनमोल हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि सफ़र चाहे जैसा भी हो, अगर साथ कोई अपना हमसफ़र मिल जाए तो रास्ते अपने आप हसीन हो जाते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा यहीं आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्ला मेंजी रोकर हमांग इंगजे तका इंगम मीडियम में 438.6 मीटर हेक इंगम 684 किलोहर्ट्स लिखतिहांग इन रमांगलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अनगी निकबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.

जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 गंपनम में एक स्टोरी में नैन कह कमे आइए तारखरे क्रिएटर्स राल तारीख आकुंगी कुनपनम रे अंडमान निकोबार आइलैंड्स असांगम प्लेटफॉर्म तहाले लंग नैन गम जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 चूकी हमक तमिनेत रूल कांगेन तने हंगरे तिनरी केनरे आइ आकुने कुनपनम रे एक इमिनेत रूल कांगेन ट्रेडिशन ही होल्ड द अप द जू द स्टोरी ये ब्लॉकल आको पनामरे आनो अधामक तो दही असानुप कंटेन तसानुप कल्चर हेरिटेज टूरिज्म पोटेंशियल ट्रेडिशन कोसिन आर्ट्स हेक इंस्पायरिंग लोकल स्टोरीज इंद्रे इमिने डिस्ट्रिक्ट सी नुप वीडियो अपलोड लही नहो हेग नेट हेग लुई मिनट्स इन लहन नद्रुंगम माय वेव्स प्लेटफॉर्म इंगम वेव्स ओडीटी प्लेटफॉर्म्स जुलंगा अनगम किने तरे दाखी एंट्री ता रजिस्ट्रेशन रे हेक एनरोलमेंट रे इनरे ए इनगम माय वेव सेक्शन गम वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे लिप्त लुयानाय अलहांगो सितंबर चिंगे तनेट के नेरनाय ता फुल मेने इन हेक ता नेंगेन यिप ता सेलेक्ट नेरे वही मिन तनु अपलोड लरे वीडियो आसा मेने लेवल्स उ इनगम डिस्ट्रिक्ट लेवल नताने आनाय कइन तनेंगेन गाज इनगम स्टेट लेवल ननेट लेक तनेंगेन गाज इनगम नेशनल लेवल नताने लेक तनेंगेन मिन असुपकेत हक कतही रजिस्टर तरेंगाज इनगम माय वेव्स एप गाज अपलोड लनु वीडियो रे तहेंग ने टेक लुई मिनट्स इन लायन होय देहांगी तरे तने तहालेन लंग तिनक कत हेड ठांग ही इंगी हरा हालेन ल तरा न्यू कटिस तमे होल ओ एलगम चर्च सेंट जॉन द बैप्टिस्ट इहर विंदर बे

0: Dikatnya Brian, Andrew, Tameri, asalnya ke antara yang mana ahang ini tahatin ke ka? Asal ngam terhayan berita ke diri tak hi, telek tan sin ngah ehang ngatel ngahang ta ngamu, hek inhure chang rong ita kasata, ita fan ke jauh telah harap, salam yan ngay.
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं घड़ी।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार हैं। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस

बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन खुशहाल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए। इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखें। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद लें। इसके लिए कभी भी हिचकिचाएं नहीं, इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें, इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है, इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है। इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए, कई परिवार के साथ घूमे और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन

0: Nation. This is your RJ Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
1: आप एडवेंटिस मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पांचवी कड़ी सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी। धरती के गीत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकगीत का प्रसारण का समय रहेगा 6:30। 6:45 पर सुनिए देशगान। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:05 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इसके अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में NR प्रशांत का कर्नाटक गायन सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी दूसरी सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा दोस्ती शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 354वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। समाचार वार्ता 6:40 पर। 6:45 पर सुनिए वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव और FM 100.9 MHz दोनों में प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सवेरे 8:30 पर सुनिए CH आत्मा का गायन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं

वसीफ उद्दीन डागर का हिंदुस्तानी शैली में गायन अहीर भैरव, गीत गाता चल के तहत फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं कल दिन में 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1346वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 11 बजे। 11:30 पर सुनिए आशा भोसले के गाए गीत कार्यक्रम एक ही कलाकार में। 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम होगा। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर सुनिए समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम। आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल दिन में 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद गजलें सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5 बजे आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। शाम 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉलीगंज के गाय पालक श्री राकेश कुमार शर्मा से बातचीत होगी गाय पालन आजीविका का साधन विषय पर। रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला आप सुन सकते हैं 6:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है दिल तो पागल है फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, अभी आप गैंगस्टर फिल्म से गीत सुन रहे थे। अब सुनते हैं जुर्म फिल्म का एक गीत, आवाजें उदित नारायण और पमीला जैन की, संगीत आनंदराज आनंद का और गीत रचना देव कोहली की है।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলো হার্টজ থেকে।

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है। श्रोताओं, अब समय है महिलाओं की फरमाइश पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगिनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

0: मेरा दिल।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं साजन फिल्म का गीत। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। इस गीत की फरमाइश की है कैंबलवे से रमन।

अब सुनते हैं जुर्म फिल्म का गीत, आवाज़ें कुमार सानू और साधना सरगम की। इस गीत की फरमाइश की है रीना ने डॉलीगंज से।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं श्री विजयपुरम जंगली घाट से एस सलवी की फरमाइश पर भ्रष्टाचार फिल्म का गीत, आवाजें सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल की।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं लिटिल अंडमान से मगरंती टोपनों की फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में, सागर फिल्म का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेरी फॉर्म से विजय लक्ष्मी की फरमाइश पर दुल्हे राजा फिल्म का गीत।

सखियों, इस गीत के साथ ही मैं आपकी फरमाइशी गीतों के सिलसिले को विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपकी पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं धरती के गीत कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं देशगान।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल

माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, आज संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। सात बजकर 30 पर युवाणी कार्यक्रम के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स आप सुन सकते हैं। रात्रि 8 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाली है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरटीआई लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
8: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। डॉक्टर शर्मा ने प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। SRCC शताब्दी

समारोह में प्रधानमंत्री का युवाओं से भारतीय कंपनियों को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान। मध्योत्तर अंडमान में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिगलीपुर और सागर द्वीप में गांजा बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। और उद्योग निदेशालय की ओर से उद्यमियों के लिए औद्योगिक शेड प्रदान करने के लिए द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक संपदा स्थापित की गई।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। श्री जोशी ने 8 अक्टूबर 2017 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का पदभार संभाला था। 62 वर्षीय डॉ. शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होना था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉ. शर्मा की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। डॉ. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरे उतरने की बात कही।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है, और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलाव की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: श्री विजयपुरम में कल से 18 सितंबर तक सर्किट बैठक आयोजित की जाएगी। विभाग अध्यक्षों से सभी नोडल अधिकारियों को सुनवाई की तारीख पर संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यायाधिकरण में उपस्थित रहने का निर्देश देने को कहा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र UGC नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पुलिस और औद्योगिक संपदा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान के तहत कल दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में डिगलीपुर थाना प्रभारी तलाशी के दौरान कब्जे से करीब 100 ग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई सागर द्वीप में की गई, जहां एक

निवासी के घर के पीछे से गांजे के 4 पौधे बरामद हुए। दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर डिगलीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस ने कहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उद्योग निदेशालय की ओर से उद्यमियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक शेड प्रदान करने के लिए द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक संपदा स्थापित की गई है। यह 6 औद्योगिक संपदाएं डॉलीगंज, ग्यारहचरमा, मीठाखाड़ी, हटबे, बकुलतला और कैम्बलबे में उपलब्ध है। इन औद्योगिक संपदाओं में शेड्स का आवंटन पारदर्शी तरीके से करने और किए गए आवंटन का प्रबंधन करने के लिए प्रशासन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक संपदा आवंटन और प्रबंधन नीति 2025 अधिसूचित की है। इसके अलावा नीति को अधिक कुशल बनाने के लिए नीति के कुछ खंडों में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में एक मसौदा संशोधन अधिसूचना तैयार की गई है, जिसे प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशासन ने प्रस्तावित मसौदा संशोधन पर आम जनता, हितधारकों, उद्यमियों से 23 सितंबर तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियां और सुझाव उद्योग निदेशालय के ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष TSG भास्कर ने विमरलीगंज मैदान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित राजीव गांधी मेमोरियल फुटबॉल लीग में खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवन के लिए खेलों के महत्व पर जोर दिया। मैच के समापन पर उन्होंने दिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और वार्ड नंबर 14 के पार्षद वाई जोगाराव भी उपस्थित रहे। अंडमान निकोबार अभिलेखागार सचिवालय की ओर से अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत इंटर्न के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अभिलेखागार प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है। चयनित इंटर्न को इंटर्नशिप अवधि के दौरान ₹10,000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सहायक सचिव अभिलेखागार के पते पर 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप और इंटर्नशिप कार्यक्रम के विस्तृत नियम एवं शर्तें अंडमान निकोबार अभिलेखागार के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में 2 वर्षीय BA डिग्री कार्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण का परामर्श कल आयोजित किया जाएगा। परामर्श सुबह 9:30 बजे से महाविद्यालय के सभागार में रखा गया है। प्रवेश लेने के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। डॉक्टर शर्मा ने प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। SRCC शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का युवाओं से भारतीय कंपनियों को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान। मध्योत्तर अंडमान में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिगलीपुर और सागर द्वीप में गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। और उद्योग निदेशालय की ओर से उद्यमियों के लिए औद्योगिक शेड प्रदान करने के लिए द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक संपदा स्थापित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोता

अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सबसे पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से मायबंदर होते हुए डिग्रीपुर के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 8 तारीख को सुबह 7 बजे डिग्रीपुर से मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। 9 तारीख को सवेरे 7 बजे MV बाराटांग श्री विजयपुरम से मायबंदर होते हुए डिग्रीपुर के लिए छूटेगा। 10 तारीख को सवेरे 7 बजे यह जलयान डिग्रीपुर से उसी मार्ग होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। MV रंगत 11 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायबंदर होते हुए डिग्रीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगले दिन 12 तारीख को सवेरे 7 बजे यह जलयान डिग्रीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। 12 तारीख को रात 8 बजे MV भारत सीमा श्री विजयपुरम से मायबंदर होते हुए डिग्रीपुर जाएगा। अगले दिन 13 तारीख को दोपहर 2 बजे ये जलयान डिग्रीपुर से छूटेगा और श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। लिटिल अंडमान के लिए जलयान MV कैम्बलवे श्री विजयपुरम से 8 तारीख को दिन में 10 बजे छूटेगा। उसी रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। यही जलयान 11 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। 12 तारीख को सवेरे 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापसी करेगा। इस जलयान की श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए अगली यात्रा 13 तारीख को सवेरे 9 बजे होगी। उसी रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV भारत सीमा 10 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV कालीघाट कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार के लिए रवाना होगा। परसों 8 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार्निकोबार से छूटेगा और लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। यही जलयान 12 तारीख को भी सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाएगा। 13 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार्निकोबार से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV सेंटिनल 10 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरासा कचाल ननकौरी माकाचुआ और अफरावे होते हुए कैम्बलवे के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। 13 तारीख को रात 9 बजे ये जलयान कैम्बलवे से छूटेगा और इन्हीं बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV नालंदा 8 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैम्बलवे जाएगा। 10 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैम्बलवे से छूटेगा और उसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। 15 तारीख को भी सवेरे 9 बजे यही जलयान यानी नालंदा श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैम्बलवे जाएगा। इस जलयान की वापसी 17 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बलवे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-031-922-232-100, 031-922-233-077 और 031-922-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं।

श्रोताओं, अभी आप मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। इस कार्यक्रम का सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जानवर फिल्म से। आवाजें अलका याग्निक और मनहर उदास की है। गीत रचना समीर की।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर की लिखी रचना। संगीत दिया अनु मलिक ने, फिल्म है चेहरा। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया यहीं समाप्त होता है।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: वैसे आज बहुत खुश लग रही हैं आप, कुछ खास बात है आज?
1: अरे आता सुनने पर फोन लगा तो खास बात होगी ना
0: जी,
1: क्योंकि तो रात पूरा कार्यक्रम में ध्यान से सुन पाऊंगी और क्या बोलते हैं खुशी से सुन पाऊंगी
0: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए बताइए इसी खुशी के साथ बता दीजिए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: सर फिल्म का नाम है एक नजर, उसमें गाना है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।
0: और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगी?
1: पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा
0: जी,
1: फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी है, राकेश जी शिमला से, गंगाधर सावनकर जी, रमेश प्रजापति जी है, राम बाबू शर्मा जी, गजराज लोधी जी है, और पुष्करनाथ शर्मा है, पंचीराम शर्मा है, गोल्डी जी है, आसाम से भाई अमोल भट्टाचार्य, और लाइव सुन रहे सभी श्रोताओं को। और हाँ मैं सर एक दीपाली, दीपाली है महाराष्ट्र से, उनको भूल गई
0: जी। तो ठीक है, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मन चाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं सेवन सिस्टर से आशुतोष बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, और फोन लग गया और क्या अच्छा हो गया।
0: जी जी, तो आशुतोष जी बताइए आप काम क्या करते हैं?
1: मेरा तो छोटा मोटा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का।
0: जी
1: आज तो संडे है, घर में हूँ।
0: जी
1: और
0: जी,
1: हेलो म्यूजिक लवर का आना है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज इस संडे के दिन आराम से आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, आज लता जी का एक गाना 1979 में रिलीज हुआ।
0: जी,
1: फिल्म का नाम है खानदान। मुलाकात है पहला है, इस गाने को लिखा है नक्सलाल पुरी जी ने और श्याम साहब ने सबसे सब गाने।
0: जी ठीक है आशुतोष जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मन चाहा गीत।

Hello, music lovers. Hello, music lovers. Hello. Hello. दोस्तों, शायद किसी श्रोता किसी कारणवश हमारे श्रोता का हमसे संपर्क टूट गया है। जब तक नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: प्रेम सिंह
0: जी। प्रेम सिंह जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया
0: जी,
1: आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी मौसम का कल अच्छी बस
0: जी,
1: ग्राम बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, तो बताइए आज का आपका दिन कैसा गया?
1: दिन काफी अच्छा था, हम कहीं बाहर गए
0: जी,
1: तो इसको 5 बजे आ रही
0: जी, तो आज तो काफी अच्छा दिन बीता आपका, घूमने भी गए थे आप जी।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है
0: जी, और गाने
1: के बोले लड़की बड़ी अनजानी
0: जी, और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: भगवान सिंह परमार है, आशुतोष जी का भी कॉल आया था, और अविनाश आशुतोष, संगीता जी है, केसरी सिंह राजपूत है, सुनील जा है, रमेश टेलर है, और भी रमेश टेलर और भगवान सिंह जी का कॉल भी आना बाकी है।
0: जी जी जी जी
1: जी लोकेंद्र वर्मा, ये सभी लोग सुन रहे हैं।
0: जी जी जी, तो ठीक है अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो सर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी भगवान सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है बरसात की रात, और गाने के बोले वादा करके सजन नहीं आया
0: जी। और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी सर जी, पहले तो महाराष्ट्र से है स्वाति सिंह जी है, दीपाली जी है, तनुश्री बेटिया है, गंगाधर सावनकर जी है, गजराज लोधी जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, राम बाबू शर्मा जी, और पूर्णिमा दीदी है बिजुप्रम से, और सप्तमी विष्णु पुन्नु जी है बिजुप्रम से
0: जी। ठीक है भगवान सिंह जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मन चाहा गीत।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, चित्रपट संगीत।

अगली पेशकश कुछ दिल ने कहा फिल्म से, स्वर दिया अनुराधा पोडवाल ने, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निखिल विनय का।

अब सुनते हैं शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में तैयार जावेद अख्तर की लिखी रचना। आवाज़ें शंकर और बाबुल की है। इस गीत को हमने लिया है ये क्या हो रहा है फिल्म से।

0: श्रोताओं, आपके मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: अंतराल के बाद अब सुनते हैं वर्तमान फिल्म का गीत। स्वर दिया कुमार सानू ने, गीत रचना रानी मल्लिक की है और संगीत राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीत रचना समीर की है और संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को हमने लिया है किसी से दिल लगा के देखो फिल्म से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग से

कक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो, अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार में स्नातक डिग्री का समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के भीतर उचित माध्यम सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफीदगंज नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के पद आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह का कंसोलिडेट सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रिज्यूम 20 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रिज्यूम चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूम अंडमान pmb@andnic.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों को वेरिफिकेशन 1 दिसंबर 2026 से सभी वर्किंग डे में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी _अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने

0: पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
4: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य

0: मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह

0: इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
2: दृष्टवती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सर्प देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके 4 द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीन राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम घाघरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती से इस पर संबंध है।
1: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
3: नदी नदी के किनारे है, अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके जहाँ तक सरस्वती संगम होता था ये सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्यम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदी, इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव श्रवस और देव वाप इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
1: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां।

0: सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
1: राखीगढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4:2:1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
2: राखीगढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
3: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
2: राखीगढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
1: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, ये 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फॉयल और 42 मृदभांड मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
0: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखीगढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
4: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ

0: व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहां से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
2: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशिएंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशिएंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है। अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोगों हड़प्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ी से मिला है।
3: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
4: खुदाई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली

0: चित्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में किए भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
2: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
3: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी, और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी, जो राखीगढ़ी था, विशाल, पांच विशाल सब नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था सिंधु सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए, जब साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
4: ईएसआई जहाँ भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है, तो जरूर वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तो ईएसआई की काम करने की पद्धति का पता चलता है, और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं, और उनको सिखाया भी जाता है, साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण है, जो

0: चीज के जो है साधन है उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
1: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
2: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी शाहपुर और रोकी था दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
3: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
1: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
4: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया, राखीगढ़ी में ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लग गई है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
3: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा, राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा अलुवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा अलुवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
5: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है और राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम

0: है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे, जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है, बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियर्स अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बैरियर्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी, इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
0: जीपीआर, मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स हैं आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें, और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
2: राखी गढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है, और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आरके पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णय्यंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड।

0: लीजिए, अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य की कृति देवी रमे मामवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, देवी रमे मामवाब्दि तनये, इन द राग वसंता, सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru, and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे है। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 16वीं तिथि तदनुसार 7 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: मनुष्य जैसा भाव रखता है अथवा जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। अगर वो अपने को मिट्टी का पुतला मानता है तो उसके जीवन में जड़ता आ जाती है, और इसके विपरीत अगर वो अप